0: সতর্কতার সাথে চলাচল করতে এবং সমুদ্র সৈকতে বিনোদনমূলক কার্যকলাপে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আকাশবাণী কলকাতা। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायासी मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं, जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है। ढेक और महोग पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर है 800-24-71-234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थोरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 2 लापता है। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कल होरमोज जलडमरू मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रिटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये युद्धविराम तुरंत लागू हो गया है। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 223 रन बना लिए। अभिषेक वर्मा ने 69 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत और भारत ने 30

0: दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
3: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल

0: यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और इसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक,

0: रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0112331 0418 0112317117। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता, लोकशक्ति की खबर है। युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही, उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हूती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed after overcrowded boat captain.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 9:11 और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

माँ दुर्गा, जिनका प्रत्येक रूप अनंत शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है, वहीं माता चंडिका का स्वरूप भयानक और विनाशकारी है, जो अधर्म, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए प्रकट होता है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि समाज के हित में अगर असुर अति मारक हो और उसको समाप्त करने के लिए असुर का रूप भी धारण करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वरन ये आवश्यक है।

श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयस्य बुद्धि श्रद्धा सतां कुरोजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य।

माता चंडिका का स्वरूप शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतीक है। जब भी संसार में अत्याचार और अधर्म ने अपनी सीमा पार करने की कोशिश

तब प्रकट हुआ जब महिषासुर जैसे राक्षसों ने तीनों लोगों में इतना आतंक मचा दिया कि निरह प्राणियों में भी भय व्याप्त हो गया। क्या पशु, क्या मानव, क्या देव, सबको मिटाने को वे उतारू हो गए।

हरसि भीतिम अशेष जन्तु स्वस्थ स्मिता मति मदीव शुभं ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी कात दन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता ए भीर हतो ए जगद उपहित सुकंत दैते कुर्वन्त नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युम अधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्तेति नून महितान विनिहंसि देवी दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रपूता।

पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव से सहायता मांगी। देवताओं के संकल्प और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने एक अपूर्व शक्ति को जन्म दिया, मां चंडिका।

0: अस्तम अस्माकं उन्मदं सुरारि भवन् नमस्ते।
1: माता चंडिका ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। उनका हर वार, उनका क्रोध राक्षसों के विनाश का कारण बना। उनकी उग्रता से धरती और आकाश कांप उठे। कहते हैं कि मां ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर का विनाश कर देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। काल चक्र के इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मां दुर्गा अपने भक्त संतानों की रक्षा के लिए मां चंडिका का विकराल रूप भी धारण कर सकती है। जैसे जन्मदायिनी मां अपने संतानों की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार करने को सदैव तत्पर रहती है,
0: नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः।

माता चंडिका रूप की महिमा केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में अन्याय, अत्याचार और असत्य के खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्म ही नहीं बल्कि धर्म भी है। अन्याय चाहे खुद पर हो या किसी अनजान पर, आत्मबल और साहस के साथ मुकाबला करना कर्तव्य ही नहीं बल्कि मानव धर्म भी है, क्योंकि धर्म मानव द्वारा मानवता की रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं।

माता चंडिका रूप का पूजन नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से अष्टमी के दिन किया जाता है। इस दिन माँ के इस रौद्र और विनाशकारी रूप की पूजा की जाती है, ताकि हमारे भीतर की सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे नवरात्रि पर स्पेशल फीचर, स्पेशल कार्यक्रम पापहारिणी माँ दुर्गा। तो चलिए रसधारा में बढ़ते हैं आगे और पापिया के साथ आज इस भक्तिमय बेला में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का हर दिन अपने भीतर एक विशेष संदेश समेटे हुए आता है। कहीं माँ के प्रति अटूट श्रद्धा है, कहीं शक्ति की उपासना, तो कहीं मन को साधने और अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाने की प्रेरणा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम आराधना कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ का ये स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए धैर्य, तपस्या, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास भी जरूरी है। कहते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। वहीं माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपकी माला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनका शांत स्वरूप हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास में भी है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। कभी किसी सपने को पूरा करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, कभी किसी रिश्ते को संभालने के लिए समझदारी की जरूरत होती है, तो कभी अपने मन को समझाना पड़ता है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, माँ की आरती के साथ जब हाथ जुड़ते हैं तो केवल एक प्रार्थना नहीं होती, बल्कि मन में छिपी अनेक भावनाएं भी माँ तक पहुंचती है। कोई भी माँ अपने परिवार की खुशियां मांगता है, कोई अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तो कोई जीवन की परेशानियों से निकलने का रास्ता। और कई बार तो हम बिना कुछ कहे ही माँ के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं ऐसी होती है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। बस मन कहता है, माँ हमारे मन की बात समझ ले।

दोस्तों, नवरात्रि हमें यही अवसर देती है कि हम कुछ पल अपने लिए भी निकालें। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम कितनी ही जिम्मेदारियां निभाते हैं, परिवार, कामकाज, रिश्ते और भविष्य की चिंताएं हमारे मन में घिरे रहती है। लेकिन जब हम माँ के सामने दीप जलाते हैं तो जैसे स्वयं को याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समान सामना करने के लिए हमारे भीतर भी शक्ति मौजूद है। जरूरत है तो बस उस शक्ति को पहचानने की।

माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन तप और साधना के प्रतीक है। उनकी कथा में ये संदेश छिपा है कि सच्चा संकल्प रास्ते की कठिनाइयों से घबराता नहीं। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी साधना और दृढ़ निश्चय के कारण ही उन्हें तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। इस कथा को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास करना कितना जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, विश्वास एक दिन में मजबूत नहीं होता और ना ही जीवन की हर उलझन का समाधान तुरंत मिलता है। लेकिन यदि हम अपने प्रयासों में ईमानदार रहे, मन में सकारात्मकता बनाए रखें तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति मिले, ये सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि मिले और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखने का साहस मिले।

दोस्तों आप सुन रहे हैं इस भक्ति में सफर में हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ का यह स्वरूप हमें केवल पूजा पाठ का महत्व नहीं समझाता बल्कि जीवन जीने की एक सुंदर सीख भी देता है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन साधना नहीं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना तप है, किसी की बात धैर्यपूर्वक सुनना भी तप है, अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करना भी तप है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता न करना भी तप है। कभी आपने सोचा है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कितना बदल सकती हैं? रोज कुछ नया सीखना, अपने समय का सही इस्तेमाल करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी से कटु शब्द कहने से पहले ठहर जाना, ये सभी छोटे प्रयास हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हुए हम अपने भीतर ऐसे ही गुणों को विकसित संकल्प करने की प्रस्तुति लेते हैं। और एक बात, धैर्य रखने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हम हर परिस्थिति को चुपचाप सहते रहें। धैर्य का अर्थ है सोच समझकर निर्णय लेना, अपनी शक्ति को पहचानना और सही दिशा में कदम भी बढ़ाना। माँ की उपासना हमें साहस भी देती है और विवेक भी। इसलिए आज हम माँ के सामने सर झुकाए तो उनसे केवल मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना न करें बल्कि ये भी मांगे कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और समझ और हिम्मत भी मिले।

दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना में यही प्रेरणा छिपी है। अपने संकल्प पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए, कठिनाइयों को सामने अपनी मन की शक्ति को कमजोर मत पड़ने दीजिए। पूजा के साथ साथ यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार पाए तो हमारी भक्ति और भी सार्थक हो जाएगी। तो आइए आज के इस शुभ अवसर पर माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। प्रार्थना करें कि हर घर में सुख शांति बनी रहे, परिवारों में प्रेम और सद्भाव बढ़े, बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले और हर व्यक्ति को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस प्राप्त हो। जिनके मन में कोई चिंता है उन्हें शांति मिले, जो किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें सही दिशा मिले और जो किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं उन्हें उम्मीद की नई किरण दिखाई दे। इसी मंगल कामना के साथ आज के रसधारा कार्यक्रम में अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है कि माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा और भक्ति के इन स्वरों ने आपके मन को सुकून दिया होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास प्रेम बांटते रहिए, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखिए। मैं हूँ आपकी दोस्त पापिया और आप सुन रहे थे रसधारा। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ फिलहाल आपसे विदा। ठीक दोपहर के 12 बजे वापस मिलूंगी हिंदी कार्यक्रम सुरभि के साथ। तब तक के लिए जाते जाते आपके लिए छोड़े जा रही हूँ अनुराधा पौडवाल एवं साथियों के आवाज में हमारा अगला और आखिरी गीत। मिलते हैं मीडियम भी 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों को नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंबा रोड।

0: इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। पुलिस ने वाहन चालकों से ये भी कहा है कि वे प्रभावित इलाकों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र से गिरी। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possess the talent and potential to provide them.
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
1: Delhi government is set to launch the Durga e-auto scheme to create safe, dignified and sustainable self-employment opportunities for women and transgender persons. The Durga scheme, that is Driving, Upliftment and Rozgar for Women and Transgender initiative, will also promote clean and inclusive mobility across the national capital. The government has informed that the scheme will facilitate the allocation of 1300 pink electric autos in its first phase, of which 1,170 electric autos will be reserved for women beneficiaries and 130 for transgender beneficiaries. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. In its advisory, the traffic

मीडिया में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल है। सामिन का नाम इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:15:45 हो रहे हैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुआ तुमसे वो अफसाने कहाँ जाते। जी हाँ सामिन कराम, हमारा दिल भी आपकी मोहब्बत के कई अफसानों से वाबस्ता है। यही वजह है कि रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आफताब आलम। आप तमामी सामिन को आफताब आलम का पुरखलुस आदाब। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो आइए दोस्तों, आईने की इसी सदाकत के साथ रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की इब्तदा करते हैं।

कि किसी वजह से बीच में ही स्कूल की तालीम छोड़ चुके हों या मदरसे की तालीम हासिल किए हों, उन्हें रस्मी तालीम और असर हाजिर की मतलूबा महारत की तरबियत देकर रोज़गार का मौके फराहम करना है। सामिन कराम, नई मंजिल नौजवानों को मियारी ज़िंदगी और माशी सरगर्मियों में शमूलियत अख्तियार करने का हसीन मौका फराहम करती है। इस मंसूबे के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या रियासती ओपन स्कूलिंग सिस्टम के जरिए दर्जा 8 से 10 की सनद अक़लियती कम्युनिटी से वाबस्ता नौजवानों को फराहम की जाती है। उन्हें मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक वोकेशनल तरबियत भी दी जाती है। सामिन कराम, नई मंजिल स्कीम के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों में कम अज़ कम 70% को उजरत वाली मुलाजमत फराहम करने का हुकूमत हिंद का हदफ है। साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड और इलाज मुआलजा से मुतल्लिक ESI की सहूलत भी उन्हें दी जाती है। इस स्कीम के तहत तरबियत पाने वाले नौजवानों को माहाना वजीफे के तौर पर 1,000 रुपये उनके अकाउंट में रास्त भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, नई मंजिल से वाबस्तगी अख्तियार करने के मुतल्लिक अहलियत के हवाले से अगर बातें करें तो इस स्कीम से मंसूब होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 17 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए, उसका ख़ानदान गरीबी खत के नीचे का होना चाहिए और वो मतला शुदा अक़लियती बरादरी से वाबस्ता हो। इस स्कीम के तहत लड़कियों के लिए खसूसी तौर पर 30% से 33% तक नशिस्तें महफूज हैं। दोस्तों, इस स्कीम को अलग से नहीं चलाया जा रहा है बल्कि इसे PM विकास नामी जामे व कारामद स्कीम में जम किया गया है। सामिन कराम, वर्ल्ड बैंक की 50% मालियात के साथ नई मंजिल स्कीम की शुरुआत की गई थी और 5 वर्षों के बाद तकरीबन 650 करोड़ का बजट इसके साथ मुख्तस किया गया। गर्चे नई मंजिल स्कीम को प्रधानमंत्री विकास योजना के साथ जम किया गया है, लिहाजा प्रधानमंत्री विकास स्कीम के तहत स्कूल छोड़ने वाले अक़लियती कम्युनिटी के नौजवानों को ओपन स्कूलिंग के जरिए दर्जा 8, 10 और 12 की तालीम दी जाती है और उन्हें सनद से भी नवाजा जाता है। सामिन कराम, आपको एक बार फिर बता दें कि इस स्कीम की जब शुरुआत हुई थी तो 5 वर्षों के लिए तकरीबन 650 करोड़ रुपए का बजट इसके साथ मुख्तस किया गया था। दोस्तों, अहल नौजवान PM विकास माइनॉरिटीज अफेयर्स .gov.in पोर्टल पर जाकर दरख्वास्त जमा कर सकते हैं, मस्कूरा स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। अलगरस सामिन कराम, नई मंजिल स्कीम से वाबस्तगी अख्तियार करके आज अक़लियती बरादरियों के लाखों नौजवान बेहतर रोज़गार कमा रहे हैं, अपना और अपने अहल खाना की किफालत कर रहे हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि अहल हजरात इस स्कीम से मंसूब होकर इससे इस्तेफादा करें और कौम व मिल्लत की तामीर व तरक्की के हवाले से हुकूमत हिंद का तआवुन करें।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।

सामिन कराम, अभी आप मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म ज़माने को दिखाना है के नगमे से महसूस हो रही थी। इस नगमे को कलमबंद किया था मजरूफ सुल्तानपुरी ने और मौसीकी से आरास्ता किया था आर डी परमन ने। सामिन कराम, आप अपने दोस्त आफताब आलम के साथ रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर समाअत फरमा रहे हैं, जो कि मीडियम एप 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ वो मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर दस्तयाब है। साथ ही साथ आप इस चैनल को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचेता टाइप करके बराह रास्त समाअत कर सकते हैं। दोस्तों, अंजुमन के आइंदा हिस्से में अब पेश खिदमत है मंजरनामा, जिसके तहत आज हम बातें करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के मुतालिक। सामिन कराम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम हुकूमत हिंद की जानिब से जारी करदा एक नहायत ही नफाबख्श व कारामद स्कीम है, जो कि पसमादा और तालीमी सतह पर पिछड़े इलाकों की लड़कियों को मियारी रिहायशी तालीम फराहम करने के हवाले से नहायत ही सूदमंद व कारामद साबित हुई है। दोस्तों, मस्कूरा स्कीम की इब्तदा अगस्त 2004 में की गई थी। इब्तदाई दिनों में ये स्कीम सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी सतह पर क्लास 6 से 8 तक रिहायशी स्कूल कायम करने के लिए थी। फिर इसे सर्व शिक्षा अभियान में जम किया गया। अब ये स्कीम क्लास 6 से 12 तक की तालीम का इहाता करती है। इस मंसूबे के मकासद उन इलाकों में लड़कियों की तालीम को फ़रोग देना है जहां देही ख़वातीन की ख़ानदगी कौमी सतह से कम है, पसमादा ग्रुपों की लड़कियों को मियारी तालीम फराहम करना, सिन्फी फ़र्क कम करना, लड़कियों को इब्तदाई से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक तालीम जारी रखने में मदद देना, स्कूल छोड़ने वाली या स्कूल न जाने वाली लड़कियों को दोबारा तालीम से जोड़ना और महफूज रिहायशी माहौल में तालीम सेहत व महारत की तरबियत देना वगैरह हैं। सामिन कराम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के हवाले से अहलियत और तेजियात के मतलब अगर हम बातें करें तो इस स्कीम के लिए उम्मीदवार लड़की की उम्र 10 से 18 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस स्कीम में 75% नशिस्तें पसमादा शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट या अकलियती कम्युनिटीज़ की लड़कियों के लिए मुख्तस की गई हैं और बाकी 25% सीट गरीबी रेखा की लकीर गरीबी लकीर से नीचे के ख़ानदान के लड़कियों के लिए मखसूस हैं। सामिन कराम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत हुकूमत हिंद उन लड़कियों को ज़्यादा तरजीह देती है जो कि स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट यतीम या सख्त माली परेशानियों से दो चार हैं। इस मंसूबे के तहत तालीमी तौर पर पसमादा ब्लॉक्स में वाक़ स्कूलों में अहल लड़कियों का दाखिला किया जाता है और ये दाखिला रियासत यूनियन टेरेटरी की एजुकेशन डिपार्टमेंट या समग्र शिक्षा ऑफिस के जरिए होता है। इसके लिए कोई मरकजी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है और ना ही दाखिला इम्तहान लिया जाता है, बल्कि जुमला मुतालिका अमाल रियासती सतह पर अंजाम दिए जाते हैं। दाखिले के हवाले से मकामी ज़िले तालीमी ऑफिसर ब्लॉक ऑफिसर या समग्र शिक्षा के दफ्तर से राबता करना पड़ता है। कुछ रियासतों में ऑनलाइन या ऑफलाइन दरख्वास्त जमा किया जाता है। दोस्तों, दाखिले के ज़िम्न में उन लड़कियों को खसूसी तरजीह दी जाती है जो कि स्कूल से बाहर हैं या दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखती हैं। सामिन कराम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत लड़कियों को कई सहूलतें फराहम की जाती हैं। उन्हें रिहाइश, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और तालीमी मवाद, तिब्बी देखभाल, सेहत और सफाई से मुतालिक सहूलतें, खुद दिफाई तरबियत, पेशा वाराना महारत की तरबियत, कंप्यूटर तालीम वगैरह मुफ्त दी जाती हैं। मुल्क की कुछ रियासतों में इस स्कीम से मंसूब लड़कियों को सालाना स्टाइपेंड तकरीबन 1200 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों, मस्कूरा

के तहत स्कूल के एग्जाम में टाइप वन क्लास सिक्स से एट तक, टाइप टू क्लास सिक्स से टेन तक, टाइप थ्री क्लास सिक्स से ट्वेल्व और टाइप फोर क्लास नाइन्थ से ट्वेल्व तक हैं। ये जुमला एग्जाम समग्र शिक्षा के तहत कायम हैं और रियासतें हसब ज़रूरत इन एग्जाम का इंतखाब करती हैं। दोस्तों, बहुत सी रियासतों में के जी बी वीस को मरहलावार क्लास ट्वेल्व तक मियारी व तरक्की पसीर बनाया जा रहा है और कई रियासतों में लड़कियां बड़े पैमाने पर इससे मुस्तफीद भी हो रही हैं। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम मरकजी व रियासती फंड से चलाई जाती है। अलगरस सामिन कराम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम जो कि सर्व शिक्षा अभियान में सम है, हुकूमत हिंद की जारी करता एक नहायत ही सूदमंद वो नफा बख्श स्कीम है जिसके जरिए मुल्क भर में पसमांदा गरीबी खत के नीचे के खानदान से मंसूब वो अकलियती कम्युनिटीज की लड़कियां जो किसी वजह से अपनी तालीम आगे बढ़ाने से कासिर रह गई थी, उन्हें इस स्कीम से इस्तफादा करने का बेहतरीन मौका मैसर आता है। उन्हें जेवर तालीम व पेशावाराना मुहारत से आरास्ता किया जाता है ताकि वो अपना और अपने अहले खानदान की किफालत कर सकें। सामिन कराम, अभी आप रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में मंजरनामा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के मुतालिक हमारी बातें समाज फरमा रहे थी।

तेरी बाहों में मिली ऐसी तस्कीन हमें, तेरी बाहों में मिली ऐसी तस्कीन हमें कि सदियों की थकन एक पल में मिट गई।

जी, सैर व तफरीह से कुदरती माहौल में घूमने फिरने, नए लोगों से मिलने जुलने और मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत से आशना होने का हसीन मौका भी मैसर आता है। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में सैर व तफरी की अहमियत व अफादियत को उजागर करने और आप तमाम सामईन को इससे आशना करने की गरज से हर सोमवार रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में हफ्त रोज़ा प्रोग्राम सुहाना सफ़र के तहत हम मुल्क के किसी बेहतरीन खूबसूरत व कुदरती माहौल से आरास्ता सियाहती मरकज़ के ताल्लुक से बातें करते हैं और आज हम हफ्त रोज़ा प्रोग्राम सुहाना सफ़र में गुफ्तगू करेंगे लेह लद्दाख के मुतल्लिक। सुहाना सफ़र प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सामिन कराम, हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ लेह लद्दाख कुदरती हुस्न व जेबाइश का बेहतरीन मरकज़ है, जहां दुनिया भर के सयाह इसके खूबसूरती व दिलकशी के तस्करों से मुतासिर होकर यहां खींचे चले आते हैं। मरकज़ की मातहत रियासत लेह लद्दाख हिमालय और कराकुरम पहाड़ी सिलसिलों के दौरान वाक़ एक बुलंद इरतफाई सर्द सहरा या कोल्ड डिज़र्ट है। इस सरजमीन के दरमियान बहुत सारी खूबसूरत, दिलकश और प्यारी चीज़ें हैं जो कि इंसान के दिलो दिमाग को फरहत व इम्बिसात अता करती हैं। इस सरजमीन के दामन में मौजूद खुश्क पहाड़, फिरोजी झीलें, रेत के टीले, कदीम खानकाहें और इस पर कायम नीला साफ व शफाफ आसमान इसकी मकबूलियत और शोहरत के राज होने के साथ साथ इसके कुदरती हुस्न खूबसूरती की काबिल ज़िक्र वजह भी हैं। अलावा अज़ीज़ लद्दाख का कुदरती हुस्न इसके मुतनव्वे मनाज़िर की वजह से भी दुनिया भर में काफ़ी मकबूल व मशहूर है। दोस्तों, हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर फैली झील पेंगोंग तसो लद्दाख के कुदरती हुस्न में बेहतरीन इजाफा करती है। ये झील तकरीबन 4,350 मीटर बुलंदी पर 134 किलोमीटर लंबी है। इस झील की खास बात यह है कि पूरे दिन इसका पानी फिरोजी, गहरा नीला, सब्ज और चांदी जैसे रंगों में तब्दील होता रहता है। तुलुए आफ्ताब और गुरूब सूरज के अवकात में पेंगोंग तसु का हुस्न अपने उरूज पर होता है। सामिन कराम, लद्दाख में मौजूद नुब्रा वैली के सफ़ेद रेत के टीले, दो कोहान वाले बैक्टेरियन ऊंट, दरियाए सियोक और बर्फ से ढके पहाड़ इस सरजमीन की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। सामिन कराम, कुदरती हुस्न व दिलफरेब मनाजिर से मालामाल ये इलाका यानी लेह लद्दाख में तकरीबन 20 हाई पासिस मौजूद हैं जो कि सयाहों को यहाँ तक पहुँचाने में मुआविन व मददगार साबित होते हैं। इनमें जोसीला, खारडुंग लॉ, चांग लॉ, उमलिंग लॉ काबिल ज़िक्र हैं। इन पर खड़े होकर चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों और गहरी वादियों के हुस्न का मुशाहिदा सयाहों को खूब शादमा करता है। सामिन कराम, लेह लद्दाख के कुदरती हुस्न व जेबाइश को दुबाला करने में मैग्नेटिक हिल, दरियाए सिंध और जांस्कर का संगम, लूली लैंड और हिमिस नेशनल पार्क वगैरह नुमाया मुआवनत करते हैं। दोस्तों, ये मनाजिर इतने दिलफरेब होते हैं और इनमें इतनी इनफरादियत होती है कि लोग इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सड़क सफ़र भी कहते हैं। सामिन कराम, गरहम लद्दाख के तहजीबी व सकाफती और तारीखी पस मंजर के हवाले से बातें करें तो लेह लद्दाख में बुत मत की अकीदतमंदी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसे लिटल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। कदीम रेशम रूट पर वाक़ होने के सबब यहाँ तिब्बती, वस्त एशियाई, मकामी तहजीब व सकाफत का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। हिमिस गोम्पा यहाँ की सबसे बड़ी और मशहूर खानकाह है। जून जुलाई में यहाँ हिमिस तसीचू त्यौहार नहायत ही अकीदत और शादमानी के साथ मनाया जाता है, जिसके दौरान नकाब पोश रक्स किया जाता है जो कि यहाँ के लोगों की अकीदतबंदी और सकाफती बूबास का बेहतरीन मंज़र है। सामिन कराम, इसके अलावा
थिक्सी गोंपा जो कि 12 मंजिल

इमारत यहाँ की दूसरी मशहूर खानका है। साथ ही साथ यहाँ की कदीम खानकाहों में आलची, लामा यूरो, डिस्किट वगैरह हैं, जिनकी दीवारों पर की गई मुसव्वरी ज़ायरीन को फरत और रूहानी सुकून से मालामाल करती है। सामिन कराम, कुदरती खूबसूरती व दिलकशी से मुजैन इस सरजमीन पर बसने वाले लोग नहायत ही बिलंसार वो मेहमान नवाज होते हैं, जो यहाँ आने वाले सयाहों का खूब ख्याल रखते हैं, उन्हें हर मुमकिन बेहतरीन खदमात फराहम करते हैं। दोस्तों, किसी भी सफ़र के दौरान खाना पीना इसे और पुरमसरत वो यादगार बना देता है। लेह लद्दाख आने वालों की मेहमान नवाजी के हवाले से यहाँ के लजीज व रिवायती खानों में मोमो और थुकपा काफ़ी मशहूर हैं। साथ ही साथ यहाँ की बटरटी सयाहों की थकान दूर करने और इन्हें इनके सफ़र को खुशगवार बनाने में बेहतर मावनत करती है। दोस्तों, मस्कूरा जुमला बातें इस बात के गमाज हैं कि लेह लद्दाख महज कुदरती हुस्न जेबाइश की सरजमीन ही नहीं, बल्कि कलबी सुकून, मुहिम जोई और सकाफती तजर्बे का बेहतरीन मरकज़ भी है। यहाँ की खामोशी व खुशगवार फसा, साफ हवा और पहाड़ी मनाजिर कुदरत की अजमत व किबरियाई का बेहतरीन एहसास दिलाते हैं। सामिन कराम, अभी आप रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में हफ्त रोज़ा प्रोग्राम सुहाना सफ़र के तहत लेह लद्दाख के कुदरती हुस्न व ज़ेबाइश के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12 और अभी आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम सुरभि। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम सुरभि की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस यानी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गठिया और इससे संबंधित अन्य बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनके लक्षणों, उपचार और बचाव के बारे में लोगों को जानकारी देना है। विश्व गठिया दिवस की शुरुआत वर्ष 1996 में आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य गठिया से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सामने लाना और समाज में इस बीमारी के प्रति समझ विकसित करना था। समय के साथ ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। गठिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके कई प्रकार होते हैं और ये केवल बुजुर्गों को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि बच्चों और युवाओं को भी गठिया के कुछ प्रकार देखे जा सकते हैं। कई बार लोग जोड़ों के दर्द को उम्र बढ़ने का सामान्य लक्षण मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि दर्द या सूजन लगातार बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत आवश्यक है। समय पर बीमारी की पहचान और उचित उपचार के इसके लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित जीवन शैली और चिकित्सक के निर्देशों का पालन भी महत्वपूर्ण है। विश्व गठिया दिवस हमें ये समझाने का अवसर देता है कि जागरूकता, समय पर उपचार और सामाजिक सहयोग के माध्यम से गठिया से प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस दिन का संदेश स्पष्ट है, लक्षणों को नजरअंदाज न करें, सही जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें। इसी जागरूकता संदेश के साथ कार्यक्रम चर्चा है मैं आज बस यही तक। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सुरभि के अंतर्गत कार्यक्रम पहल, पर उससे पहले चलिए सुन लेते हैं हमारा

तो दोस्तों चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए पहल की ओर चलते हैं, जहां आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी के सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुबह सुबह सड़क किनारे चाय की दुकान लगाने वाला व्यक्ति हो, फल और सब्जियां बेचने वाला विक्रेता, ठेले पर नाश्ता बेचने वाला दुकानदार, या फिर रोजमर्रा की छोटी मोटी वस्तुओं की बिक्री करने वाला फेरी वाला, ये सभी हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनका कारोबार भले ही छोटा हो, लेकिन इनके परिश्रम से लाखों परिवारों की आजीविका चलती है। हालांकि इन छोटे कारोबारियों के

सामने एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है, अपने व्यवसाय को चलाने और बढ़ाने के लिए समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त करना। कई बार सीमित पूंजी के कारण वे पर्याप्त सामान नहीं खरीद पाते, कारोबार का विस्तार नहीं कर पाते और जरूरत पड़ने पर उन्हें अनौपचारिक स्रोतों से अधिक ब्याज और पैसा उधार लेना पड़ता है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। तो आज के पहल कार्यक्रम में हम इसी योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले अनेक लोगों की आजीविका प्रभावित हुई, उनका कारोबार ठप हो गया और काम दोबारा शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में इन विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि छोटे कारोबारी अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटा सके, अपनी कमाई को बेहतर बना सके और धीरे धीरे औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके। योजना की शुरुआत के बाद इसके स्वरूप में बदलाव भी किए गए। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के पुनर्गठन और इसके ऋण वितरण अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दी। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत योजना का ऋण वितरण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई भी गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स तथा आर्थिक सहायता पहुंचाना और उनके व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करना। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है। पुनर्गठित योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए बिना किसी संपार्श्विक गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत पहली ऋण किश्त में 15,000 रुपए तक, दूसरी किश्त में 25,000 रुपए तक और तीसरी किश्त में 50,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये रकम अनुदान या मुफ्त में मिलने वाली राशि नहीं है बल्कि ऋण है जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करना भी होता है। प्रत्येक अगली ऋण किश्त के लिए पिछली किश्त का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करना आवश्यक है। पहली किश्त की पुनर्भुगतान अवधि सामान्यतः 12 महीने, दूसरी किश्त की 18 महीने और तीसरी किश्त की 36 महीने तक निर्धारित की गई है। ऋण की वास्तविक मंजूरी और पुनर्भुगतान की शर्तें संबंधित ऋणदाता की प्रक्रिया और योजना के लागू नियमों के अनुसार होगी। आइए चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान है। वो दुकान पर चाय के साथ कुछ नाश्ते की वस्तुएं भी बेचना चाहता है। इसके लिए उसे अतिरिक्त बर्तन, कच्चा माल और अन्य जरूरी सामान खरीदना है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। ऐसी स्थिति में योजना के अंतर्गत पात्रता और ऋण मंजूरी मिलने पर उसे अपने व्यवसाय की जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसी तरह फल और सब्जियां बेचने वाला विक्रेता अतिरिक्त माल खरीद सकता है, नाश्ते का ठेला लगाने वाला व्यक्ति अपने कारोबार को व्यवस्थित कर सकता है और अन्य पात्र स्ट्रीट वेंडर्स भी अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि छोटे कारोबारियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना भी है। नियमित रूप से ऋण चुकाने से उनके ऋण संबंधी विश्वसनीयता और भविष्य में औपचारिक ऋण प्राप्त करने की संभावनाएं भी बेहतर हो सकती हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता भी है समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान। योजना के लागू नियमों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इसका उद्देश्य समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और ऋण का आर्थिक बोझ कम करने में सहायता करना भी है। इसलिए लाभार्थियों के लिए ये आवश्यक है कि ऋण लेते समय ब्याज दर, किश्त की राशि, भुगतान की तारीख और सब्सिडी प्राप्त करने की शर्तों को संबंधित बैंक या ऋणदाता से अच्छी तरह समझ ले। अब बात करते हैं योजना के एक और महत्वपूर्ण पहलू की, वो है डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देना। आज डिजिटल भुगतान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। छोटी दुकानों पर भी UPI के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि यानी कैशबैक का लाभ भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना के पुनर्गठित स्वरूप में थोक खरीदारी के लिए डिजिटल भुगतान करने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए भी प्रोत्साहन के प्रावधान हैं।

एक बात बेहद जरूरी है कि केवल छोटा कारोबार करना ही योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवेदक की पहचान और उसके स्ट्रीट वेंडिंग व्यवसाय की स्थिति का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। स्थानीय शहरी निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी से संबंधित प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या अन्य निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता भी हो सकती है। जिन विक्रेताओं के पास आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए लागू नियमों के अनुसार अन्य सत्यापन प्रक्रियाएं भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि छोटे कारोबारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में भी काम करना है। इसी उद्देश्य से स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करके उन्हें निर्धारित पात्रता के अनुसार केंद्र सरकार की 8 चयनित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी योजनाएं भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य चयनित योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सहायता भी मिल सकती है। और इस प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दायरा केवल कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। ये छोटे विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे से जोड़ने का भी प्रयास करती है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि देश की आर्थिक प्रगति में छोटे कारोबारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके श्रम और उद्यम से न केवल लाखों परिवारों की आजीविका चलती है, बल्कि स्थानीय बाजारों और शहरी अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी मेहनत को आर्थिक सहायता, औपचारिक ऋण और डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। जरूरत इस बात की है कि पात्र लोग योजना की सही जानकारी प्राप्त करें, उसकी शर्तों को समझें और उपलब्ध सुविधाओं को जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें। इसी संदेश के साथ आज का पहल यही समाप्त होता है। और आप सुन रहे थे पहल, और जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। अब दोस्तों, कार्यक्रम सुरभि में चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो है जगजीत सिंह की आवाज में उनके एल्बम मुंतजर से। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और मैं पापिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता।

0: Please stay tuned for the news from Delhi in a short while from now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया।

सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है

0: जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
2: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
3: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
5: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
4: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग

0: को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह के तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने के तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন খেয়াল, শিল্পী মারুতি মহতা, রাগ মধুবন্তী।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देश भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वादे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे कार्यक्रम उर्वशी, और उर्वशी कार्यक्रम को लेकर आज मैं हूं आपके साथ पॉपी। हमारा और आपका साथ 5:55 तक। और आपको बता दें कि इसके बीच इस कार्यक्रम के बीच आप मधुर संगीत भी सुनते रहेंगे, तो सुनते रहिए, साथ रहिए। और हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बादलों के बीच घिरा एक गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से। और ये गीत हम क्यों सुना रहे हैं, उसके लिए एक खास वजह है, वो आपको बताएंगे। उसके लिए आपको ट्यून इन करना

एक बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना जिसे हमने लिया था प्यासे प्यासा सावन से। और आपको बता दूं दोस्तों, आज हम मेघ के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के हिस्से में मेघों का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा हाथ है। और वो हाथ क्यों है उसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आइए एक विशेष सूचना उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को दोपहर 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल युगायुग भवन P36CR Avenue कोलकाता 70001 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से यानी कि गूगल मीट के माध्यम से 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36CR Avenue, कोलकाता 70001 के नाम से भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक अर्थात 26 अक्टूबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर वीडियो सम्मेलन अथवा गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212062 अथवा 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। दिए गए डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी एक विशेष सूचना।

हाँ तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने मेघालय मेघा शब्द से एक गीत को सुनाया। वैसे ये क्यों है, उसकी खास वजह है मेघालय, यानी कि मेघों का घर, भारत का स्वर्ग। भारत के उत्तर पूर्व में बसा मेघालय सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है, जहां सुबह बादल आपकी खिड़की से अंदर आते हैं और जहां पानी इतना साफ है कि नाव हवा में तैरती लगती है और जहां धरती से प्यार ही धर्म माना जाता है। अगर जरा ध्यान दे तो मेघालय का मतलब संस्कृत में मेघ अथवा मेघ अर्थात बादल और आलय मतलब घर, मेघों का घर, जिसकी राजधानी शिलोंग है, जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। 21 जनवरी 1972 को असम से अलग होकर भारत का 21वां राज्य बना और पड़ोस में उत्तर और पूर्व में असम, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश। भाषा आधिकारिक रूप से अंग्रेजी है, पर लोग खासी, गारो और पनार भी बोलते हैं। प्रकृति का कुछ ऐसा चमत्कार है कि दुनिया का सबसे गीला स्थान चेरापूंजी और मौसिनराम यही है। यहाँ साल में 11,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। यहाँ के लोग पेड़ों की जड़ों को सालों तक बुनकर पुल बनाते हैं और चेरापूंजी का डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज 200 साल पुराना है। सिर्फ इतना ही नहीं, एशिया की सबसे साफ नदी जिसको डाउकी नदी कहते हैं वो भी यहीं स्थित है और इसका पानी बिल्कुल कांच जैसा चमकता है। झरने और गुफाएं से तो भरे हैं ये राज्य। नोह कलिकाई भारत का सबसे ऊंचा झरना और 1500 से ज़्यादा गुफाएं, जिनमें माव समाई और लियात प्राह एशिया की सबसे लंबी गुफाओं में से है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं जोड़ना चाहूंगी कि एशिया का सबसे साफ गांव मावली नोंग, यहां हर घर में डस्टबिन और प्लास्टिक बैन है। अनोखी संस्कृति है यहाँ, जी हाँ, जहां माँ को अर्थात धरती को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। और इसलिए आज हम चात सुकरा नामक एक उत्सव के बारे में बताएंगे जो कि मेघालय में स्थित है। मेघालय के लोगों के लिए ये उत्सव नहीं, ये एक भावना है, एक खुशी है, और उसी का जिक्र आज होगा हमारे इस विशेष कार्यक्रम उर्वशी में। आइए अब सुनते हैं एक खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। जब हम बात कर रहे हैं मेघालय की, तो जाहिर सी बात है गीतों में भी मेघ का आचरण तो होना ही चाहिए। तो आइए अगला गीत किशोर कुमार के आवाज़ में, फिल्म का नाम मंजिल।

योगेश का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत और साल था 1979 यानी कि 1979 और फिल्म का नाम मंजिल। पिक्चराइज किया गया था अमिताभ बच्चन के ऊपर ये गीत और बेहद खूबसूरत गीत, हारमोनियम बजाते हुए दिखे थे अमिताभ बच्चन। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं मेघों के बारे में, मेघालय के बारे में, और मेघालय की संस्कृति में एक बहुत अच्छा, बहुत विख्यात उत्सव है जिसका नाम है चड़सुकुरा। और इस चड़सुकुरा के बारे में हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले, जी हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें कि आज सात बज के दस मिनट पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन

सुधारों और महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा दिल्ली केंद्र से। तो ये थी एक विशेष सूचना जो मुझे आपके साथ साझा करना था, यानी कि 7:10 पर आप जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनाते हैं कुमार शानू और कविता कृष्ण मूर्ति के आवाज में। फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का नाम उर्वशी। पॉपी है आपके साथ आज की शाम।

1942 अ लव स्टोरी से आपने सुना ये खूबसूरत गीत, जादू था इन गीतों में। जी हाँ दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में, जावेद अख्तर के लिखे गीतों ने और राहुल देव बर्मन के संगीत ने मानो एक जादू कर दिया था। खैर ये तो बात हुई इस गीत की, हम बात कर रहे हैं मेघालय की और मेघालय में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव। हालांकि हम भी आज के दिन कोलकाता वासी बहुत खुश हैं क्योंकि हम भी एक बहुत बड़ा उत्सव के आगमन में हैं और ये उत्सव धरती में मनाया जाता है। मेघालय को मेघों का घर तो कहा ही जाता है और इसी मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में बसने वाले जयंतिया जनजाति, जिन्हें प्रार लोग भी कहा जाता है, द्वारा मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और रंगीन त्यौहार है चाद सुकरा। जयंतिया भाषा में चाद का अर्थ होता है नृत्य या उत्सव और सुकरा का अर्थ होता है खुश दिल, स्वस्थ शरीर और जीवन शक्ति के साथ, नए ऊर्जा के साथ नृत्य यानी कि नाचना। अर्थात ये शरीर और आत्मा की पवित्रता के साथ किए जाने वाला एक बंधन है, एक आनंद है, एक नृत्य है। अगर इतिहास खंगालते हैं तो इस त्यौहार का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि प्राचीन जयंतिया साम्राज्य के समय जब राजा अपना दरबार सुतंगा से जयंतियापुर ले जाते थे तो बसंत ऋतु के आगमन पर पूरे साम्राज्य की प्रजा राजा और उसके मंत्री के सामने अपने लोक नृत्य प्रस्तुत करती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में ये परंपरा बंद हो गई थी लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसे फिर से 2006 में जोवाई में फिर से शुरू किया गया और तब से ये हर साल मनाया जाता है। अब प्रश्न मन में ये होता है कि ये पर्व, ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये केवल मनोरंजन का त्यौहार नहीं है, ये किसानों का त्यौहार है, ये उनके उम्मीदों का त्यौहार है, ये उनके आस्था का त्यौहार है। ये त्यौहार में क्या होता है इसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन आइए उसके पहले एक और खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और किशोर की आवाज़ में। और मुझे उम्मीद है जिन गीतों को मैं सुना रही हूँ आज मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्स पर, और साथ ही आप हमारे इन गीतों को सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर, और ये गीतों को सुनकर आप ज़रूर खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और मन में उम्मीद जगा के हैं कि जी हाँ आने वाले दिनों में बारिश ना हो।

मेघालय की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अनोखी है। आपको बताना चाहेंगे कि मेघालय भारत का इकलौता मातृसत्तात्मक राज्य है। यहाँ तीन मुख्य जनजातियाँ रहती हैं, खासी, जयंतिया और गारो। यहाँ वंश पिता से नहीं माँ से चलता है। बच्चों को माँ का सरनेम मिलता है और घर की सबसे छोटी बेटी को पूरी जायदाद मिलती है, उसे का खायू कहा जाता है। ये महिलाओं के सम्मान का सबसे सुंदर उदाहरण है। अब बात करते हैं त्योहार के बारे में। जयंतिया जनजाति का बुआई उत्सव है चात सुकरा। अप्रैल में किसान धरती माँ का बेरिम आओ की पूजा करके बीज बोते हैं। इसका मतलब है खुश दिल से किया गया नृत्य। और शरद ऋतु में शांति के लिए किया जाने वाला शाही नृत्य को नोंग क्रेम डांस भी कहते हैं। वांगाला गारो जनजाति का सौ ड्रम फेस्टिवल अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। और साथ ही आपको बताएं, आज भारत की रॉक म्यूजिक का कैपिटल हो चुका है शिलोंग, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी संस्कृति है जो नृत्य और कला से अर्थात गीतों से जुड़ा हुआ है। ये केवल मनोरंजन का त्यौहार नहीं है जैसा कि मैंने कहा, और ये बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि जब तक चात सुकरा पूजा पूरी नहीं होती तब तक कोई भी किसान अपने खेत में बीज नहीं बो सकता। इस दिन किसान का बेरिम आओ यानी धरती माता अर्थात प्रकृति माता की पूजा करते हैं। वे धरती माँ को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले फसल को बाढ़, सूखा, कीड़े मकौड़े और सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाए रखे, या और साथ ही गाँव में शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक बना रहे। कब मनाया जाता है? हमने कहा अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? पुजारी धरती माँ का विशेष माँ की विशेष पूजा करते हैं। चावल अर्पित किए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण है नृत्य, लाहो नृत्य। इस नृत्य में खूब सारे युवती और युवक हिस्सा लेकर, बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर नृत्य करते हैं। महिलाएं पारंपरिक रिंडिया स्टेम, थो सारू, खीरवांग, सपजत और गले में सोने के सिक्कों की माला, कानों में पायला, खोइला और हाथों में खाड़ू पहनती हैं। पुरुष पिन्यवेन, इसी पोंग, रिंडिमा तेलेम और पगड़ी पहनते हैं। तो ऐसे मनाया जाता है चात सुकरा, मेघालय का एक बहुत ही जीवंत उत्सव जो कि धरती से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही पॉपी को दीजिए अनुमति, आपके साथ फिर मुलाकात होगी 6:10 पर। और अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोकल अनाउंसमेंट उज़्मा जहांगीर के आवाज़ में।

This is Akashvani. Stand by for the news at 6.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागजी और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का

स्टूडियो की घड़ी में 6:10 और दोस्तों वार्ता कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मीडियम वेव 297.6 यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम और मैं हूँ पॉपी आपके साथ। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आज 12 अक्टूबर है और आज ही के दिन पूरे विश्व में विश्व गाठिया दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आपको बताना चाहेंगे कि गाठिया एक ऐसी बीमारी है जो कह सकते हैं बिन बुलाया रिश्तेदार। जी हाँ, एक ऐसा मेहमान जो एक बार आ गया तो बोलेगा अब मैं नहीं जाऊंगा। उठते ही कड़क, बैठते ही चटाक, सीढ़ी चढ़ते ही ओई माँ, ये होता क्या है? हमारे जोड़ों के बीच ये जो गाठिया वाली जो बीमारी है ये है क्या, इसको हम बताएं कि हमारे जोड़ों के बीच एक कपकपी होती है और एक सिलिकॉन वाली गद्दी लगी रहती है। और दिन भर हम क्या करते हैं, दिन भर कुर्सी पर समोसे की तरह जमे रहते हैं, 5 किलो वजन बढ़ाकर घुटनों पर 20 किलो का आटा रख देते हैं और फिर कहते हैं घुटना दुख रहा है। तो फिर इस रिश्तेदार को रोका कैसे जाए, ये बीमारी को कैसे रोका जाए ताकि हमारे शरीर में इसका प्रवेश ना हो और शरीर बिल्कुल निरोग बने। कहा जाता है कि वजन कम करो। जी हाँ, शरीर का जो वजन है उसको कम करो और हर एक किलो अगर आपका शरीर बढ़ता है तो समझो घुटनों पर 4 किलो का सिलेंडर रख दिया जाता है। जी हाँ, इसीलिए कहना ये है कि अपने पेट को संभालना है और ये बोलना है कि थोड़ा स्लिम बनना है और स्लिम बनने से घुटने पर बोझ नहीं आएगा और ना ही आपका घुटना रोएगा। गाठिया की बीमारी में विशेषकर घुटनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि हर एक जोड़े हैं ये जोड़ों की बीमारी है, हर जोड़े में दर्द होता है, लेकिन खास करके घुटने का जो जोड़ है उस पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है और लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, दर्द में रहते हैं। अगर देखा जाए कि इसके रोकथाम के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि दूध, दही, पालक, मेथी, हल्दी वाला दूध, ये अंदर से आपको आपका जो वज़न है वो कम करता है। अखरोट, अलसी, जी हाँ अलसी, ये बहुत ही आजकल जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, ये आपके शरीर का जो सूजन है वो कम करता है। ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन अगर कम होती है तो जाहिर सी बात है वज़न कम होगा। कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा नमक, मैदा, समोसे, कचौड़ी, मतलब तली हुई चीज़ें और साथ ही अल्कोहल अर्थात मादक द्रव्य से अपने आप को दूर रखें। ये शरीर में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ाती रहती है और वही घुटनों में पथराव जैसा बन जाता है और इसी से जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। हम सब एसी घरों में रहते हैं और आपकी हड्डियां जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि हमें ज़रा धूप दो। इसलिए सुबह 8 से 10 बजे कम से कम 20 मिनट धूप को अवश्य धूप में जाएं और धूप से फ्री का जो विटामिन डी हमें मिलता है उसे लें। जी हाँ, सुबह 6 से 8 बजे के बीच या बहुत ज़्यादा हो तो 10 बजे के बीच आप अवश्य बाहर जाएं और जो सूरज से जो हमें विटामिन डी मिलती है, नेचुरल जो सोर्स है उसको हमें लेना है और उसके साथ ही विटामिन डी का जो सेवन है वो करना है। इससे क्या होगा कि विटामिन डी आर्थराइटिस के लिए बहुत ही मजबूत एक ऐसी दवा है जो विटामिन डी के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक और बात, मतलब ये जो बीमारी है इसके लिए शायद कहीं हमारा मोबाइल, लैपटॉप, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो भी, उनका भी काफ़ी हिस्सा है इस बीमारी के देन में।
गर्दन झुकाकर फ़ोन करना, झुककर लैपटॉप चलाना, और ऐसे लगेगा जैसे मतलब ये जो हम लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं झुक झुक के कछुए की तरह घंटों करते रहते हैं, इसको रोकना है, सीधा बैठना है, सीना तान के बैठना है और फ़ोन को ऊपर लेकर आना है ताकि गर्दन के साथ उसका संतुलन बना रहे और बिल्कुल सीधे में आपकी गर्दन हो और फ़ोन आपकी बिल्कुल फ़ोन हो, मोबाइल हो, उसी तरह से हो। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि पानी जो है वो पीते रहें, क्योंकि जोड़ों के बीच जो तेल है, एक साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है, वो पानी से ही बनता है। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो आपके मशीन का जो तेल है वो सूख जाता है। और आखिरी चेतावनी इस विशेष दर्द भरे बीमारी के लिए जो है वो है, अगर सुबह उठते ही, एकदम सुबह आप उठ रहे हैं और आधे घंटे तक शरीर बिल्कुल जाम रहता है, जोड़ जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और लाल हो जाता है, तो बिल्कुल भी मतलब वो कहते हैं ना केयरलेस ना बने, और साथ ही सीधा डॉक्टर के पास जाएं, और ये नहीं कि गूगल में डॉक्टर को खोजें, एक वाकायदा सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आप जाएं और अपने शरीर की जो यातनाएं हैं, जो दर्द हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। याद रखिए, घुटने के दर्दों के घुटनों के दर्द के लिए यानी कि आर्थराइटिस के लिए एक विशेष मंत्र है, कम खाओ ज़्यादा हिलो, सीधा बैठो धूप में निकलो। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के लिए एक विशेष मंत्र है और उस मंत्र में कहा जाता है कम खाओ ज़्यादा हिलो, सीधा बैठो धूप में निकलो। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो 60 साल में भी आप हाय मेरी घुटना, हाय मेरे हाथ के जोड़, ये सब जो परेशानी आपको है, हाय मेरे कमर में दर्द, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको वही करना है, खाना है, खाने के मात्रा जो मात्रा है उसमें कमी लानी है, ज़्यादा आपको हिलना है अर्थात ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ करनी है, आपको योग करना है, वर्कआउट करना है, सीधा बैठना है, स्पाइन आपका जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधा रखना है, और अंत में धूप में हर रोज़ निकलना है। आप अपने आप में सीमा बांध लें, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच का जो समय है उसमें कम से कम आधा घंटा कहीं पर भी, चाहे वो छत पर हो, अपने बालकनी में हो या बाज़ार जाते हुए हो, धूप लगना बहुत ही आवश्यक है। और ये थी एक छोटी सी पेशकश आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के ऊपर, और जैसा कि 12 अक्टूबर हमने आपको बताया और इसी दिन पूरा विश्व इस बीमारी से की रोगग्रस्त हैं और इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस बीमारी से दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और अगर कोई ये सोचता है कि ये वृद्धों का अर्थात बुज़ुर्गों का रोग है तो ऐसा नहीं है। जुवेनाइल आर्थराइटिस बच्चों की बीमारी है, एंकीक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके 20 साल में ही शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अगर 4-5 महीने तक कोई दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। और आपको बताएं, स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि बस थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे संस्कृत भाषा में। तो इसके साथ ही पॉपी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार बाधाओं को दूर करने और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे ना मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान भी श्री राहुल गांधी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, मुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBT मैदान शामिल हैं। इसके साथ ही
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries. The Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal has emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making. He expressed confidence that India's economy would reach $30 trillion by 2047.
3: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So you are an aging population, I'm a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I'll remain below 30. So from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 22 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize There's no country in the world which will probably double their GDP.
2: Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said that he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
4: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with the law and the legal framework. I received the letter yesterday and replied to it last night, and I have cited the reasons for expressing my inability to meet. I have maintained the confidentiality of the letter.
2: Delhi police has designated three new venues for protest and demonstrations: Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi. In an order, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar announced that Jantar Mantar has been denotified as a designated protest site. Delhi Metro has informed that entry and exit gates of all metro stations of the Delhi Metro network are now open. The interchange facility at all the concerned metro stations is also available. BJP has accused the Congress leader and leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, of weakening the constitutional institutions and tarnishing the image of the country. Briefing media in New Delhi today, senior BJP leader and party MP Anurag Singh Thakur alleged that whenever the Congress party suffers electoral defeat, it sometimes raises question on electronic voting machines and sometimes on the election commission. Mr. Thakur said that Congress should produce evidence instead of making accusations only. Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes, and strengthen trust in healthcare services. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert Hall and Michael Woodford for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said the work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies. As India hosts the first BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi tomorrow, Home Minister Amit Shah has welcomed all the participating Home Ministers and member state delegations. In a social media post, Mr. Shah said, the meeting underscores the shared resolve of BIMSTEC countries to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तब लक्ष्य यही था कि गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, गुजरात का नाम भारत के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचाया जाए। गुजरात से लेके विश्व मंच तक का सफर, उभरता भारत, विश्व मंच पे डटा भारत, आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास विशेषज्ञों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी आकाशवाणी समाचार में एम्बेसडर अशोक सज्जनहार का और श्री अतुल अनिजा का। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपनी बात बहुत ही बखूबी से रखते हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है आकाशवाणी में। अम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो साल 2003 में शुरू हुआ ये समिट, एक इन्वेस्टर समिट के रूप में शुरू किया गया था। बीते सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म बन गया है जो सरकारों को, बिजनेसेस को, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी एम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है, आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
2: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल राइट्स हुए थे वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हों, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर दो साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद 2005 को फिर से शुरुआत की गई। 2005 से 2007 में हर दो साल बाद इसका हुआ और अब अगर देखा जाए तो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर, मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा जो आगे ले जाते हुए दो साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का, वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नए तकनीक जो हैं उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, विकसित भारत को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
1: अम्बेसडर सज्जनार, आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अगर हम G20 समिट की बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत के 60 से ज्यादा शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले कि हम इस पे चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
3: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
1: मिस्टर अनीजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है?
4: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सदस्य बने G20 के, तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि पहले परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मैच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
1: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया गया और साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अम्बेसडर सज्जना, आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि अफ्रीकन यूनियन को इस फोल्ड में लाने के पीछे प्रधानमंत्री की कौन सी दूरदर्शी सोच रही होगी?
2: देखिए, जब से ये G20 की शुरुआत हुई थी 2009 में, 2010 में, जबकि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो तब से ये था जो अफ्रीका के जो देश हैं उनकी कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। केवल साउथ अफ्रीका एक देश था जो कि G20 का एक सदस्य था, परंतु तब से बहुत सालों से, हमेशा से अफ्रीकन यूनियन ये हमेशा कहता रहा जो उसको इसका सदस्य बनना चाहिए। हम जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन सदस्य, यूरोपियन यूनियन 27 देश है उसमें, परंतु अफ्रीका के जो हैं वो 54 देश हैं, परंतु उनकी कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है, तब जब बाली का समिट हो रहा था तो तब उन्होंने कहा था, हम गारंटी देते हैं जो हमारे जब अध्यक्षता होगी तो हम जरूर अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलाएंगे। और आपको याद होगा जो 9 सितंबर 2023 को जब जब पहले दिन ही ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो उस समय पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया जो ये पूरी तरीके से सभी देशों को मान्य है, जो अफ्रीकन यूनियन को भी एक इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्लोबल साउथ जो भी है, विकासशील देश हैं, उनके जो भी क्षेत्र है उनको सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा जो जब भारत ने इसकी अपनी अध्यक्षता संभाली थी 1 दिसंबर 2022 को, और उसके एक महीने के अंदर ही हमने जिसे कहा जाए तो एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 11-12 जनवरी को। तो 125 देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसमें शिरकत ली, और उसमें हर लेवल पर, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो, अलग अलग देशों ने उसमें सम्मिलित हुए, या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की। और फिर जो भी उनसे पूछा गया जो उनकी क्या मंशाएं हैं इसमें, तो सभी के, चाहे वो डेट हो, चाहे उनका फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए, 60 शहरों में ये मीटिंग की गए, और ये जो सभी थे डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सबको लेकर आया गया। तो मैं समझता हूँ जो भारत ने ये बताया है, जो विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है, हमारा जो इसमें थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो था वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया, और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाएगा।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया, और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला, और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनेजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी?
4: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो, ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है। तो एनर्जी के ऊपर, बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी, ये हमारी एक बुनियादी सोच है। G20 में जो वासुदेव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन्स उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अब अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत

0: ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है, और बाकी देशों को खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होती थी, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी। तो वो आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होके आप डीपर जा रहे हैं, और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से, और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में, और अम्बेसडर सज्जनार सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने ब्रिक्स समिट में लीडर्स समिट को एड्रेस करते हुए बोला।
2: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाए, और इस प्रोसेस में भारत को किन कम्पीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
3: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को, और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूँ जो चुनौतियां भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे, और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, परंतु अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने, और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं।

0: में ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा सभी मिलकर ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए। तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये शुरुआत की, और मैं समझता हूँ जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
1: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अनीजा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा अल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है, और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहां पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक अल्टरनेट रूट और एक स्टेबल रूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है तो उससे भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से ग्रो करेगी। और दूसरा प्रश्न आपसे अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनीजा दोनों से आपसे मैं ये करना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो कैसे ट्रांसलेट करती है, जब हम किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो वहां पे निर्णय निकल के आते हैं या फिर किसी बायलैटरल मीटिंग में भी देखें तो काफी मुसीबतों का भी हल निकल कर आता है। इन दोनों ही प्रश्नों पे सबसे पहले मिस्टर अनीजा आपका जवाब चाहूंगे और फिर अम्बेसडर सज्जनहार का।
2: दीक्षा आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। अब देखेंगे कि अभी इस वक्त जो है हम दो मेन मैरिटाइम चैनल्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा बाबल मंदाब जो रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। दोनों में ही एक तरह से जो ट्रेड होती है या वहां से जो शिप्स निकलते हैं सीवियर बाधा पड़ी हुई है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये रूट्स का जो मैरिटाइम रूट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमें देखना है कि ऑल्टरनेट लैंड रूट्स कौन से आ सकते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल रूट्स की अब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि आज हॉर्मुज है बाबर मंदाब है और कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका में कुछ हो जाता है चीन और यूएस के बीच में ताइवान के ऊपर जिस तरह से टकरार है तो फिर हम कहां जाएंगे। तो इसलिए भारत की ऑल्टरनेटिव रूट्स जैसे अम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वो बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा हमें देखना है कि INSTC का फाइनली अगर हम देखें उसका रूट ईस्टवर्ड्स जाता है रशियन फार ईस्ट की तरफ व्लादिवोस्टोक की तरफ, वहां से नॉर्थ आर्कटिक रूट निकल रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से चैनल्स निकल रहे हैं। हमें वो ज्योग्राफी भी देखने की जरूरत है क्योंकि वो फिर ना मलाका को क्रॉस करते हैं ना ये हॉर्मुज या बाबल मंदाब वाली आपकी प्रॉब्लम आती है, और तीसरा जो है व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई। तो मुझे लगता है कि ये लैंड रूट्स और ये जो ओशनिक बॉडीज हैं जहां पर विवाद कम है वहां पर हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जो दुनिया की हालात है ये इन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इनको एक्टिवेट करें। ये आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जब मैं दिल्ली में था ये बात होगी शायद 2000 या 2001 की, तब से बात चल रही है लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है कि इन रूट्स को जो है पूरी तरह से कायम किया जाए, खास करके अभी जो रिसेंट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है हॉर्मुज को लेकर और बाबल मंदाब को लेकर, मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात आपकी दीक्षा जो थी वो है पर्सनल केमिस्ट्री की प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ा ही यूनिक एलिमेंट आया है कि पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की जो कनेक्ट है चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक तरह से आता है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि दुनिया में कई लीडर ड्रिवन डिसीजंस होते हैं तो उसमें बहुत एक तरह से भारत के लिए बहुत फायदा है क्योंकि आपके जो टॉप लीडर्स के साथ जो है सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं बट पर्सनल इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छी है, उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है।

0: हम देख रहे थे इंडोनेशिया में भी विजिट हुआ, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो प्रधानमंत्री के साथ पूरे विजिट में साथ थे, रिसीव करने के साथ साथ जो भी पूरा विजिट था, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से वेलकम किया गया प्रेसिडेंट प्रबोवो ने, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल एलिमेंट एक बीच में आके एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि ये एक एलिमेंट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि मिस्टर अनेजा ने कहा, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप अपने विचार इस चीज पे हमारे साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और उसका कितना फायदा मिलता है भारत को डिप्लोमेटिकली।
2: जी देखिए, ये बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जो बेसिकली दो देशों के बीच में अगर जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट पर होते हैं, वो उनके हितों पर होते हैं, वो उनके पर्सनल रेपो पर्सनल रिलेशन पर नहीं होते हैं। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहज तरीके से सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलना होता है, और चाहे जो पूरे विश्व के जो नेता हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों देशों के बीच में, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको अपने पर्सनल रेपो से, पर्सनल रिलेशन से एकदम वो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का, जो वो सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं। एक जो दूसरा आपने प्रश्न किया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं, जो कनेक्टिविटी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, देखिए हॉर्मुज में करीब पूरे विश्व का 20% जो तेल है वो वहां से जाता है, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को, तब से हम देख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और ये इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो विकासशील देश है उनको, और उनमें भी भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत करीब अपना 85% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है, और उसके अलावा अगर हम देखें जो गैस है, LPG है, LNG है, करीब जो भी हम जितना भी आयात करते हैं उसमें करीब 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसलिए यहाँ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन गया है, और इसको इधर से तेल का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और इसीलिए भारत हमेशा यही कहता है जो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। यही बात बाबेल मंडप की है, यहाँ पर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% तेल जाता है तो बाबेल मंडप का करीब 12-15% तेल जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हो गए हैं, और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अब INSTC की बात हुई, IMEC की बात हुई, और फिर अब ये पोलर रूट की बात है, क्योंकि जो रूस के उत्तर से जो पोलर रूट जाता है, और इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहेगा, जो हमको और भी जो हर प्रकार के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे याद है ये जो INSTC 1997 में जब मैं मॉस्को में हुआ करता था तब की हमने शुरुआत की, परंतु ये इसको आगे हम नहीं ले जा पाए क्योंकि हमेशा ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस बने रहे, परंतु अब हमको ये जरूर प्रयास करना है जो उसमें हो, चाबहार को भी हमें डेवलप करना है, और जल्दी से इस क्षेत्र को बिल्कुल सभी मिलकर इसमें शांति लानी चाहिए, जिससे कि हम इसको आगे जो INSTC और चाबहार को और आगे ले जा सकें।
1: मिस्टर अनेजा, मेरे पास अभी दो और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं दोनों ही विशेषज्ञों से आपकी राय जानना चाहूंगी। तो मिस्टर अनेजा, आपसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस दुनिया के 7 मेजर कैट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी की बात है, ये वाइल्ड लाइफ की बात है। तो अगर इसके बारे में आप हमसे चर्चा करें तो इसके आउटकम्स आपके हिसाब से कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इसको हम कैसे प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे?
0: भारत की जो अप्रोच रही है पूरे विश्व के लिए, वो एक होलिस्टिक अप्रोच रही है। खास करके अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो एक तरह से संतुलन की जरूरत है, जिसमें आपके जो ग्रीन कवर है, अमेज़न के फॉरेस्ट हैं जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके बीच में एक संतुलन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी विश्व में बैलेंस रहेगा। और जिसका इफेक्ट अगर बैलेंस ना रहे तो फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर से लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये संतुलन बनाए रखें, और यही अप्रोच भारत की रही है। जहां तक के सवाल आ रहा है बिग कैट अलायंस का, तो ये बहुत जरूरी उसमें एलिमेंट था। हमने देखा कि भारत के अंदर एक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल इनिशिएटिव था कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो आपको याद होगा 2022 की शायद बात है कि जब हम चीता को बोट्सवाना से और साउथ अफ्रीका से लेके आए यहाँ पर भारत में, तो बिग कैट अलायंस का और उसके तरफ जो फोकस है वो उस बात से बिल्कुल दर्शाता है, मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि हम बिग कैट अलायंस हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, उसको टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुकी है सिर्फ भारत के टूरिज्म के लिए। अफ्रीका में देखा कि किन्या में जैसे तंजानिया के बॉर्डर पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद पर लोग जाते हैं एनिमल माइग्रेशन को देखने के लिए,
1: मसाई मारा।
0: तो एक तरह से मसाई मारा वही एलिमेंट है कि सिर्फ उसके कई पहलू हैं। एक तो जो बैलेंस की मैंने बात की है, और दूसरी एक जो बात है कि हम अपने एनवायरमेंट और अपनी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा और ज्यादा जुड़े। हम आजकल देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है जो रोके जा रहे थे उनको भी खोला जा रहा है, तो इसलिए एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, आखिर में चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। हमने इतने बड़े मुद्दों पे चर्चा करी, और अब मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरफ आना चाहूंगी, और वो है योगा डिप्लोमेसी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल योगा डे यूएन ने डिक्लेयर कर दिया, और आज अगर हम देखें तो योगा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है और ना ही सिर्फ एक व्यायाम का रूप है, बल्कि पूरे दुनिया में लोग योगा से प्रभावित हैं, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। तो योगा को एक सॉफ्ट पावर और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टूल के रूप में अगर हम देखें तो कैसे इसने पूरा एक रूप निभाया है, और योगा के साथ अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ दें, आप कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के फेवर में कैसे काम करती हैं?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 2014 में, आपको याद होगा जो पहली बार वो सितंबर 2014 में वो गए थे वहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, और तब मुझे याद है जो उन्होंने कहा था, और ये उनका ही था, आउट ऑफ द बॉक्स उनका ये थिंकिंग था, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, भारत की कोई ऐसी देन देनी चाहिए पूरे विश्व को जिससे कि वो पूरे विश्व को उसका फायदा होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमें मनाना चाहिए, और मुझे याद है जो तब हमारे जो सभी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जो अपनी डेलीगेशन थी, उन्होंने कहा जो उनको बहुत ही ये ऐसा इसमें कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं लगा, परंतु फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, इसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए। और फिर उसी साल हमने देखा है जो करीब पूरे विश्व के 193 देश हैं, परंतु उनमें से 177 देशों ने मिलकर इसको प्रमोट किया, और इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस जून को उन्होंने माना, और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हर साल पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, और बहुत ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से, इसको ऊर्जा से इसको मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा जो ये सॉफ्ट पावर की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनकर उभरा है, और इससे पूरे विश्व में भारत का एक डंका बजता है जो केवल एक इसको एज एन एक्सरसाइज लिया जाए, परंतु ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक होलिस्टिक तरीका है जो अपने को डेवलप करने का, अपने को आगे ले जाने का, और इससे पूरे विश्व में इसका भारत की जो छवि है इसको और भी और आगे लेकर जाया गया है। तो मैं समझता हूँ योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, पूरे विश्व में, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, यही मैंने पहले भी कहा था, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है, जो विजन है, वो इन सभी चीजों में दर्शाता है, जो कैसे हम जहां पर लोग नहीं सोचते जो कोई पॉसिबिलिटी है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, उसमें ही संभावनाएं निकाल लेते हैं, और उसी से पूरे विश्व में भारत का जो

0: योगदान है उसको और आगे ले जाने में सफल रहे हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहा और मिस्टर अनीजा दोनों विशेषज्ञों ने ही काफी विस्तृत रूप से सारे ही विषयों पे हमें जानकारी दी और जो हमारा डिस्कशन रहा है आज उससे मेरे लिए तो काफी ही इनलाइटनिंग रहा है। आई एम श्योर जो भी लिसनर्स इस डिस्कशन को सुनेंगे उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 25 वर्षों की जो प्रधानमंत्री की जर्नी रही है वो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में उन्होंने जो किया वो तो किया ही, उसके साथ साथ विश्व मंच पे कैसे भारत आगे जाए उस पे भी काफी काम किया गया है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद दीक्षा, बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

आकाशवाणी कोलकाता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं सांध्य कार्यक्रम दर्पण। मैं हूं पॉपी आपके साथ और आज दर्पण के अंतर्गत एक नज़र में है ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है और उसमें दूसरी शक्ति का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। कहानी के अनुसार पूर्व जन्म में ये हिमालय की पुत्री पार्वती थी। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। नारद जी की सलाह पर उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर सिर्फ पत्ते खाकर और अंत में बिना कुछ खाए पिए घोर तप किया। इसी कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस कठोर समस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि शिव जी ही उनके पति होंगे। तप, त्याग और संयम की यही शक्ति है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में। माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही शांत और सौम्य हैं। एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं। सफेद वस्त्र पहनती हैं जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि बिना मेहनत और धैर्य के कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता।

दर्पण के दूसरे भाग में आज साहित्य सरिता है और साहित्य सरिता में आज बातें होंगी शैलेश मतियानी की। हिंदी साहित्य में पहाड़ की आत्मा को अगर किसी ने सबसे सच्चे रूप में उतारा है तो वो है शैलेश मतियानी। शैलेश मतियानी का जन्म 14 अक्टूबर सन 1931 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बाड़ेछीना गांव में हुआ था। उनका असली नाम रमेश सिंह मटियानी था। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी और इसलिए वे सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए। रोजी रोटी के लिए दिल्ली, बंबई, इलाहाबाद भटकते रहे। कभी फुटपाथ पर सोएं तो कभी होटल में बर्तन मांजे। लेकिन किताबों से उनका जो नाता था वो कभी भी नहीं टूटा। यही संघर्ष आगे

कर उनकी कहानियों की ताकत बनी। 14 अप्रैल 2001 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। अगर साहित्यिक यात्रा देखें तो मटियानी ने लगभग 30 उपन्यास, 25 कहानी संग्रह और कई निबंध लिखे। उनकी पहली कहानी दो दुखों का एक सुख 1950 के दशक में प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बोरीवली से बोरबंदर तक, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, चौथी मुट्ठी, मुख सरोवर के हंस। कहानी संग्रह अगर देखें तो दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, अहिंसा, अर्धांगिनी। और बाल साहित्य का अगर संग्रह देखें तो उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा, जिसके लिए उन्हें सन 1990 के दशक में कई पुरस्कार मिले। मटियानी को आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है, लेकिन वे सिर्फ पहाड़ के लेखक नहीं थे। उनके यहाँ कुमाऊं का समाज, पलायन, गरीब औरतों का संघर्ष बिल्कुल जीवंत है। पहाड़ों में ये सारे चीजों का जो मिलना शायद कहीं उन्हें प्रेरणा दिया। शहर का यथार्थ, मुंबई की झुग्गियां, फुटपाथें और छोटे लोगों की जिंदगी, निम्न स्तर के लोगों की जिंदगी को उन्होंने बहुत करीब से देखा और लिखा। उनकी भाषा में कुमाऊनी बोली की मिठास और लोकगीतों की लय मिलती है। कहानीकार मशहूर लेखक निर्मल वर्मा ने एक बार कहा था, मटियानी में पहाड़ बोलता है। अगर सम्मान देखें तो उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार, शारदा सम्मान और फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। शैलेश मटियानी का जीवन हमें सिखाता है कि बड़ी डिग्री के बिना भी अगर आपके पास जीवन का सच्चा अनुभव है तो आप महान लेखक बन सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि वो केवल हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई करी, उन्होंने किया था। वे आज भी उत्तराखंड के सबसे बड़े साहित्यिक प्रतीक हैं।

हम हिंदुस्तानी से आपने सुना मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत गीत, और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म ये वादा रहा से। और फिलहाल इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता

0: प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा

0: उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
2: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
1: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
3: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
1: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की कर क्रांति, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की। साथियों, पहली जुलाई 2017 को वो तारीख थी जब भारत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देखा। रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से एक नारा गूंजा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी से पहले देश में 17 तरह के अलग अलग टैक्स और 23 तरह के सेस लगते थे। हर राज्य की सीमा पर ट्रक घंटों खड़े रहते थे। जीएसटी ने उन सभी सीमाओं को मिटाकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। तो क्या जीएसटी सच में आम आदमी, व्यापारी और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है वस्तु और सेवा कर, भारत की कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindiAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अभी हाल में हुई और उसमें बहुत सारे कर सुधार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी गेम चेंजर बताया।
1: जी, इस बार जो 57वीं काउंसिल पे हमारा फोकस था जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म्स पे।
0: जी,
1: 56वीं काउंसिल पे रेट पे फोकस था, 57वीं पे प्रोसेस रिफॉर्म्स पे, जो कि डे टू डे हर बार, जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल में उसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, लिटिगेशन, वो सब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो वो सारी उसको सारे जो इश्यूज उसको आते हैं उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।
0: बहुत अच्छा।
1: इसमें
0: तो क्या क्या ऐसे सुधार रहे जिनसे इस जो बैठक थी इसमें क्या ऐसे निर्णय रहे जिससे कि आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को लाभ हुआ?
1: जैसे मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो पहली चीज थी रजिस्ट्रेशन।
0: जी,
1: जब वो अप्लाई करता है तो अक्सर उसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
0: जी,
1: तो उसे हमने सरल किया। न सिर्फ उसके लिए अधिकारी के लिए इंस्ट्रक्शन इश्यू किए हैं, पर हमने फॉर्म भी अपना चेंज किया।
0: जी,
1: फॉर्म में जो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं वो फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन से हमने कर दिए।
0: जी,
1: तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता है कि क्या देना है, क्या
0: आसान
1: हो गया। कई चीज जहां पर वो सिस्टम रिस्क टू रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमने ऑटोमेट कर दिया है। वो खुद डिक्लेयर करेगा और वो खुद ही हमारा सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
0: जी,
1: सो एक ट्रस्ट दी टैक्स पेयर का हमारा वो हमने एक शुरू किया है।
0: जी, इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए इस जो सुधार हुए हैं 57वीं परिषद में, इसमें क्या क्या

0: से सुधार हुए जो अलग अलग लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?
1: जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल,
0: जी
1: एक्सपोर्टर्स को रिफंड अप्लाई करना पड़ता था, रिफंड अप्लाई करता है तो वो अधिकारी के पास जाता है, उसमें समय लगता है अधिकारी को। अब जो है आगे चल के हम रिफंड को ऑटोमेट कर देंगे। अगर वो लो रिस्क है, सिस्टम ने देखा रिस्क है, लो रिस्क है, तो उसको 100% रिफंड एक्सपोर्टर को तुरंत सिस्टम से मिल जाएगा।
0: वेरी गुड।
1: तो उससे बहुत जो अभी 60 दिन लगते थे वो होके 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा।
0: बहुत बड़ी सुविधा,
1: बड़ी सुविधा। ऐसी कैश लेजर का रिफंड होता है, छोटा व्यापारी ईसीओ से सप्लाई करता है, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से वो करता है, वो अपना रिफंड अप्लाई करेगा तुरंत हाथों हाथ उसे रिफंड हो जाएगा, और ये 1 नवंबर से ही हो जाएगा चालू। सो ऐसी कई चीजें छोटे व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, या जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, की इनपुट का रेट ज्यादा है आउटपुट का कम है, तो उसका रिफंड भी हमने ऑटोमेट कर दिया। 90% रिफंड उसको अप्लाई करने के 10 दिन में शुरू में, आगे चल के वो इमीडिएट जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा।
0: बहुत बड़ी सुविधा,
1: तो उससे बहुत आराम हो जाएगा व्यापारियों को।
0: और इसके अलावा कुछ सजा के प्रावधान हुआ करते थे, टैक्स समय पे नहीं भर पाए या कुछ तो इस तरह से, उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है।
1: जी, अरेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया जीएसटी से। तो आगे चल के जब लॉ चेंज हो जाएगा तो कोई अरेस्ट जीएसटी में अधिकारी अरेस्ट नहीं कर पाएगा किसी को। दूसरा, हमने प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जहां हम अपील फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट वो करने को, तो उसके भी हमने कई कानून जो जहां पर वो इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं वो हमने हटा दिए हैं। तो आगे चल के प्रोसिक्यूशन में आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी, गलत इंटरप्रिटेशन, गलती हो गई और मुझे कोर्ट में उन्होंने वो कर दिया, फौजदारी का मुकदमा कर दिया,
0: वो तो मुकदमेबाजी से अब छूट
1: मिल जाएगी।
0: जी, और हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं। पहले श्रोता हरिद्वार से हैं, रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर जी।
0: जी पूछिए।
2: विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: सबसे पहले मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी सभी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अभी हाल ही में जो दिवंगत अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी, उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी।
0: रवि जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूं सर, अब की बार जो 57वीं बैठक हुई उसमें क्या क्या कर सुधार हुए हैं, और सर मैं जानना चाहता हूँ की अब की बार अरेस्ट से किस किस सजा को हटा दिया गया है, ये मेरा सवाल रहेगा सर।
1: अरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट का पावर नहीं रही है जीएसटी में। सो आगे चल के कोई भी ऐसा वो नहीं है ऑफेंस जिसपे आपको अरेस्ट, जिसको किसी को अरेस्ट किया जा सके।
0: तो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि अगर समय पे कर नहीं चुकाया या कम कर चुकाया या और भी कोई हुई तो गिरफ्तारी की जो तलवार लटका करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जो कर प्रणाली थी
1: जी
0: कैसी थी, और उससे जीएसटी ने उसको किस तरह से चेंज किया?
1: जीएसटी के आने से पहले 17 कुछ कर थे जो जीएसटी ने अपने में समेट लिए। उसमें एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय उत्पाद कर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, वो एक अलग, उसको रिटर्न फाइल करना अलग कंप्लायंस था। वैट का रजिस्ट्रेशन लेता था, वैट का अलग कंप्लायंस था। एक स्टेट में ही उसका दायरा था, तो एक स्टेट में ही उसका क्रेडिट था और एक स्टेट में ही सब था। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर भेजता था, अपना सामान बेचता था, तो उसे क्रेडिट नहीं मिलता था। जीएसटी ने क्या किया, ये जो और अलग अलग टैक्स ऐसे ही करके कुछ 17 टैक्सेस में वो रजिस्टर्ड था, जीएसटी ने वो खत्म करके एक टैक्स ले लिया है, प्लस एक पूरा देश एक ही उसमें कर दिया। तो वन नेशन वन टैक्स का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी वो देश में व्यापार करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं रहेगा कि मैं स्टेट में नहीं हूं। तो जीएसटी ने उसे हर स्टेट में एक, उसको एक जैसा कर दिया, उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक मार्केट हो गया।
0: तो कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो जीएसटी का नारा था वो कितना सफल हो सका है?
1: काफी हो गए, बहुत सफल हुआ है। अगर आप देखिए जीएसटी में, जब हम जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 56-66 लाख हमारे टैक्स पेयर्स थे, करदाता थे, अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में,
0: लगभग 3 गुना से भी अधिक हो गए।
1: जी, तो जी। जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए, कितने छोटे व्यापारी, जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40 लाख और 20 लाख उससे नीचे है, वो भी जीएसटी में आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है,
0: लाभ मिल रहा है।
1: जी
0: और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं, राजेंद्र।

0: राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
1: नमस्कार जी मुकेश जी और
0: नमस्कार
1: जी
0: सवाल पूछिए।
1: जो एक विकील शुक्ला जी उनके बारे में बता रहे थे तो उनका मैं भी उनके सुन के बड़ा अफसोस हुआ है, तो मैं उनको भगवान को उनको आत्मा में शांति दे। और सवाल ये था जी, जब जीएसटी की बैठक होने को होती है तो कभी काफी मार्केट में रेट जो सामान के वो बढ़ जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बैठक होनी थी उसके बाद सामान के कुछ रेट बढ़ जाते थे, इसके बारे में जीएसटी विभाग क्या करता है, इसके बारे में जानना। नमस्कार।
2: देखिए जीएसटी विभाग तो रेट नहीं वो डिसाइड करता, वो तो मार्केट डिसाइड करता है, पर ये स्पेकुलेशन की होता है कि लोगों ने अपने की अंदेशा किया कि रेट घट सकता है या बढ़ सकता है तो लोग अपना वो कर देते हैं, परंतु इस पे जीएसटी विभाग कुछ नहीं वो कर सकता है। जीएसटी विभाग रेट्स डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट करता है।
0: तो कुल मिला के जीएसटी डिपार्टमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो केवल मार्केट में ही होता है और दुकानदार या जो भी उत्पादक हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी आने के बाद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई पर क्या असर पड़ा है?
2: कि जीएसटी की खासतौर पर 56वीं काउंसिल जो पिछली काउंसिल हुई थी इससे पहले सितंबर 2025 में, उसमें हमने 4 से 2 रेट कर दिए, 5% और 18% का रेट रहा, 12 और 40% का रेट
0: समाप्त कर दिया।
2: सो रेट इसलिए किया गया और फिर सरकार ने ये भी वो कोशिश की कि वो बेनिफिट जो है लाभ है वो ग्राहकों को पहुंचा जाए, कि व्यापारी खुद ना रख लें रेट कम का लाभ। वो जी गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया, गवर्नमेंट ने कम कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई कि व्यापारी कि ग्राहक अपनी समस्या बता सकें, रेट कोई पास ऑन नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंश्योर किया कि जब भी रेट कट हो रहा है वो रेट कट ट्रांसफर होता है कस्टमर को।
0: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहां पर आ रही थी कि जीएसटी का लाभ जो पिछली 56वीं काउंसिल में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों ने खरीदारी की कारों पर और दूसरे वाहनों पर, इसके अलावा टीवी फ्रिज इन सब पे कितनी सारी फायदा हुआ था।
2: जी अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू, हमने रेट कम किया पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। अब हमारा ऐसा रेवेन्यू आ गया कि हम 2 लाख करोड़ से कम आता है तो हमें महीने का तो लगता है कि कम आया इस बार रेवेन्यू। तो क्या हुआ है, रेट कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ गई जिसकी वजह से रेवेन्यू
0: परचेज पावर बढ़ी, उससे रेवेन्यू बढ़ा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जब 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया, वो ऐसा ये किस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिन पे
2: जनरली फूड आइटम्स थे जो कि खाने पीने की लोगों की वो चीजें थी, उसको उस पे 5 से 0 कर दिया गया रेट। दवाइयों पे लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पे हमने 5 से 0 काउंसिल के रिकमेंडेशन से 5 से 0 हुआ ताकि लोगों को फायदा हो जाए। उसके साथ स्टेशनरी की चीज, स्टेशनरी जो बच्चे स्कूल रहते हैं स्कूल की पेंसिल
0: वो स्टेशनरी
2: कॉपी नोटबुक उन सब का दाम जीरो कर दिया कि क्योंकि आगे चलते क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी था, इसलिए सरकार काउंसिल ने डिसाइड किया कि उनके रेट्स जीरो कर दिए।
0: कुल मिला के आम लोगों के लिए उसमें काफी ऐसे लाभदायक निर्णय थे जो उनको फायदा पहुंचाया। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एनपी सिंह। सिंह साहब आपका बहुत बहुत सवाल है आपका।
3: सभी पैनलिस्ट को नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। मेरे 2 क्वेश्चन है।
0: जी बोलिए
3: सर। पहली बात तो ये है कि अगर वो कोई जीएसटी अधिकारी सरप्राइज विजिट पे आ जाता है
0: जी,
3: तो क्या उसे क्या चीज मांगी जाए जिससे वो पता लगे कि हाँ ये वाकई में हमारे पास इसी चीज के लिए आया है।
0: जी।
3: और दूसरा मेरा एक बड़ा सरल सा बड़ा मतलब आंसर आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट रेट सारा परचेज है
0: जी।
3: जैसे हमारी पंजाब से आती है दिल्ली के लिए तो हमारे पास आईजीएसटी तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है
0: जी,
3: लेकिन जब हम इधर सेल करते हैं लोकल करते हैं तो आधा आईजीएसटी आधा सीजीएसटी हो जाता है, तो आईजीएसटी इकट्ठा है तो वो हमें जब 1 साल के बाद हमें जो बच जाता है वो रिफंड मिलना चाहिए
0: जी।
3: ये 2 क्वेश्चन है सर।
2: जी पहला जो सवाल है अधिकारी वाला, अधिकारी जब आपके पास आता है तो वो एक ऑथराइजेशन एक उसे एक ऊपर अपने अधिकारी से जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है, वो एक चिट्ठी लेकर आएगा, उस लेटर पे DIN होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप CBIC वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं सही में अधिकारी ने इशू किया है कि ये ऐसे ही इसने खुद बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं जब अधिकारी आए उसे।

0: पूछिए आपको क्या कोई परमिशन है आपके पास आने की, वो देखिए आप, उसका आई कार्ड चेक करिए कि वो एक सही में अधिकारी है कि नहीं, आई कार्ड चेक कीजिए, उसकी परमिशन देखिए, फिर उसमें एक डिन नंबर होगा, DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको चेक करिए। CBIC की वेबसाइट पे हमने लिंक दिया हुआ है, गूगल करेंगे DIN तो आपको आ जाएगा, वहाँ चेक करिए कि सही में वो अधिकारी है कि नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है, IGST क्रेडिट आएगा, तो IGST क्रेडिट और आपकी लोकल सप्लाई है दिल्ली में, पंजाब से आपके पास आ रहा है IGST का, आप पेड आपके पास इनपुट आ रहे हैं, तो उसको आप IGST को यूज़ कर सकते हैं CGST SGST अपना टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना IGST क्रेडिट को यूज़ करिए, CGST SGST क्रेडिट जो दिल्ली में आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ये जवाब उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनकी जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं थाने से, महाराष्ट्र के थाने से, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना था मतलब जो स्टेट के जो छोटे मोटे समझो जो टैक्स थे वो खत्म करके एक ही बना दिया, तो जो मतलब ये जो GST सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मतलब उनके इसमें, तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये महीने का महीने या साल भर में मतलब इनको कैसे फंडिंग किया जाता है? और बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो कंप्लेंट रहता है कि टाइम पे मिलता नहीं है, और मतलब किस किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, मतलब कैसे तय होता है, थोड़ा बताइए।
0: जैसे गुरुनाथ जी, आपने महाराष्ट्र में कोई चीज़ खरीदी, आप महाराष्ट्र में ही हैं, आप थाने में जाके किसी दुकान से आपने चीज़ खरीदी, तो अगर आप बिल देखें तो उसमें उस चीज़ की वैल्यू कितनी रहेगी, उस पर CGST और SGST सीधे दिखेगा कितना। मान लीजिए उस पर 5% टैक्स है, 2.5% CGST, 2.5% स्टेट GST आपको दिखेगा, तो वो जो स्टेट GST है वो सीधे GST स्टेट को जाता है। दूसरा है, जैसे आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था, पंजाब से उनको दिल्ली में आया, तो पंजाब से दिल्ली में आया तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। अब क्या होगा कि जब वो दिल्ली में आया उनके पास, या आपके पास, मान लीजिए आप ही कोई चीज दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र में लेते हैं, तो आपके पास महाराष्ट्र में आया तो उस चीज का कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उस चीज को उपयोग आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो उसका जो GST रेवेन्यू, जो भी GST है उस चीज पे, उसमें 50% उस स्टेट को सेटल होता है। जो वो स्टेट्स का इशू है वो सेटलमेंट वाला इशू है, क्योंकि उसमें कई सारी सप्लाई का पता नहीं रहता, क्योंकि सही से डिक्लेयर नहीं होता, टैक्स पेयर ने अगर सही से डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसमें वो डिस्प्यूट आता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पर आगे चल के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो सेटलमेंट देखता है, और GSTN जो सेटलमेंट का सिस्टम वाला सेटलमेंट देखता है, दोनों लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और कई एक SOP बनाया है ताकि आगे चल के हम इसको सुधार सकें, ताकि ये सेटलमेंट वाला जो इशू है, जो राज्य का पैसा है, वो इशू रिजॉल्व हो सके।
1: तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम वस्तु और सेवा कर भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये है मनोज। मनोज ने सवाल किया है कि GST क्या छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है, और GST को साल में कितने बार भरना होता है?
0: GST, देखिए GST में एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, एक लिमिट है, उसके नीचे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हैं चाहें तो, पर आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वो है 40 लाख रुपए अगर आप गुड्स पे डील करते हैं, माल में वो करते हैं, और सेवा में करते हैं तो 20 लाख रुपए आपकी वो थ्रेशोल्ड है। छोटे व्यापारी अगर उससे नीचे हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर वो लेना चाहे तो ले सकता है। लेने से ये फ़ायदा है क्योंकि उसको जितना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका उसे इनपुट वो जो भी उसने चीज़ें खरीदारी की उस पर टैक्स पे किया, उस टैक्स का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर अपनी आगे की GST जो पे करना है उसमें वो यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उस क्रेडिट को।
1: बिल्कुल।
0: रिटर्न्स हैं GST में, आपके पास हर महीने एक रिटर्न होता है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका वो किसी से आप टैक्स सप्लाई करते हैं, उसे टैक्स लेते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपसे सामान खरीदता है। पर GST में छोटे व्यापारी के लिए जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, जहां वो 3 महीने में एक बार

0: एक रिटर्न फाइल करेगा पर मंथली टैक्स अपना पे करेगा। दूसरा, इस काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट नेट को मंजूरी मिली है काउंसिल से, जिस पे अभी काम करके अगली काउंसिल में हम उसके वो डिटेल्स लेकर जाएंगे कि कैसे करना है। उसमें प्रपोजल था कि एनुअल रिटर्न, मतलब साल में एक रिटर्न फाइल करेगा और क्वार्टरली 3 महीने में एक पेमेंट करेगा। तो अभी जो 12 साल में हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जगह साल में एक करेगा, और जो हर महीने पेमेंट कर रहा है उसका तीन महीने में एक बार पेमेंट करेंगे। तो उससे काफ़ी सरल हो जाएगा रिटर्न, छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम दुकानदार से सामान लेते हैं
1: जी,
2: तो हमें GST देना पड़ता है, तो अब हमें ये पता कहाँ कैसे चलता है कि दुकानदार हमें GST रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता है कि कितना GST हमें हमसे लिया जा रहा है।
0: देखिए, अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार को जब आपको चीज बेचता है उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको चीज की उस वस्तु की वैल्यू जो होगी वो मूल्य बताएगा, मूल्य के ऊपर GST रेट। अगर कोई चीज आप लेते हैं इस पर 18% GST है, तो 9% CGST और 9% SGST दिखाएगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा आपकी जो इनवॉइस है रसीद में कि उसमें GST कितना उसने आपसे चार्ज किया है और कितना एग्जैक्टली उसकी कितना वैल्यू था, कितना रेट था, वो सब उस रसीद पे लिखा रहेगा।
1: गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, GST ने केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को कैसे बदला है? क्या ये सच है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये उदाहरण है?
0: जी, GST आप सोचिए एक कानून है जो कि हर स्टेट अलग से अपना अपना वैट चलाता था, उससे पहले सेल्स टैक्स था
1: जी,
0: कानून एक ही था पर सब स्टेट्स अपना अपना अलग एडमिनिस्टर करते थे, सेंटर अपना अलग करता था। GST में सबने अपनी पावर्स दी, सबने एक साथ बैठ के हर निर्णय एक साथ होता है। आप सोचिए 57 में मीटिंग्स हो गई, 57 मीटिंग्स में, काउंसिल मीटिंग्स में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई लॉटरी पे
1: जी,
0: वरना कभी वोटिंग नहीं होती। हर निर्णय
1: सर्वसम्मति से
0: होता है, कंसेंसस से होता है, जहां हर स्टेट अपनी बात रखता है, हर स्टेट को अपना बात बोलने का मौका मिलता है। वहां तो यहाँ तक कि जब काउंसिल से पहले मीटिंग्स होती हैं कमेटी की, उसमें भी स्टेट के मेंबर्स होते हैं
1: जी,
0: तो उसमें भी स्टेट्स अपने अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ही सर्वसम्मति से काउंसिल में जाता है। तो काउंसिल का एक सबसे बड़ा वो है कि एक साथ बैठ के एक चीज पे डिसाइड करना, एक चीज पे सर्वसम्मति से डिसाइड करना, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का GST का अनुभव सबसे अच्छा योगदान है।
1: सबसे बड़ा योगदान ये रहा, और इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए GST वरदान साबित हुआ है।
0: GST ने छोटे व्यापारी के लिए, खासतौर पे छोटे व्यापारी का कंप्लायंस आसान कर दिया। GST में उसको पता है कि जितना उसने टैक्स दिया उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना आगे कर भुगतान कर सकता है। छोटा व्यापारी जो ECO के माध्यम से अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान बेचना चाहता है देश में, पर उसके लिए हमने और इस बार बहुत सरल कर दिया, वो ECO का जो वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर सकता है उस स्टेट में जहां पर उसके खुद का ऑफिस नहीं है। तो उससे उसे क्या होगा, वो आराम से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा और अपना अपना कर भुगतान कर पा, अपना सप्लाई करेगा और सप्लाई कर भुगतान आराम से कर पाएगा। तो GST ने उसको एक बड़ा आसान तरीका दे दिया है अपना व्यापार स्टेट से बढ़ा के पूरा देश में उसे करने का, वन नेशन वन टैक्स के तरह।
1: एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ दिल्ली में थोक मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है कुछ जगहों पर, क्या उसको भी GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
0: अगर उसका 40 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड उसका टर्नओवर
1: बिक्री हो जाती है,
0: बिक्री अगर साल की 40 लाख से ऊपर है तो उसको करना अनिवार्य है
1: जी, और उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा
0: जी। पर अगर आप देखें उसको, उसने जब चीज खरीदी तो उस पर उसने टैक्स पे किया
1: जी,
0: उसके लिए अच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ले ले ताकि उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना कर भुगतान कर दे, और वो जो टैक्स उसने सामान लेते हुए खरीदा है उसमें उसको इस्तेमाल
1: खाते में आ जाएगा
0: तो उसको लाभ है GST में रजिस्ट्रेशन लेकर। अगर नहीं लेगा तो पूरा वाला टैक्स जो उसने पूरा इनपुट
1: सारा बेकार चला जाएगा,
0: वो सारा बेकार चला गया वो
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को GST को लेकर आपकी क्या सलाह है?
0: नए स्टार्टअप्स के लिए GST, पहला तो रजिस्ट्रेशन सरल होना है, रजिस्ट्रेशन हमने सरल कर दिया उसके लिए, हमारे GST सिस्टम में आना उसके लिए बहुत आसान कर दिया इस काउंसिल के बाद।

0: दूसरा अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका रिफंड हमने सरल कर दिया
1: जी।
0: रिटर्न उसका टर्नओवर कम है तो रिटर्न्स हमने उसके लिए कम कर दिए,
1: लिमिटेड कर दिए,
0: लिमिटेड रिटर्न्स हो गए, एक टर्नओवर से नीचे रहेगा। देन उसका जो लिटिगेशन, मान लीजिए डिस्प्यूट होता है कोई टैक्स का कुछ होता है, तो उसके लिए हमने प्रोसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी। 10,000 रुपए से कम का नोटिस नहीं देंगे उसको
1: जी।
0: तो छोटे अमाउंट के नोटिस कम हो गए उसके लिए। जो लिटिगेशन प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक इशू किया है, पूरा एक सर्कुलर इशू करने जा रहे हैं कि कैसे करना है। तो एक ट्रस्ट रहेगा सिस्टम पे उसे कि जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रामाशंकर वाजपेयी जी। रामाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जीएसटी में कटे हुए पैसा अगर कहीं गलत हाथों या गलत उससे जाता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करें?
0: देखिए जीएसटी में अगर आपको लग रहा है कहीं चोरी हो रही है, कहीं बेईमानी हो रही है, तो आप अपने एक अपने अगर डीजीजीआई को बोल सकते हैं। डीजीजीआई जो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार का सीबीआईसी का इंटेलिजेंस विभाग है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। आप लोकल कमिश्नरेट में कर सकते हैं शिकायत कि ऐसा हो रहा है चोरी, एंड वो लोग उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें आगे क्या कैसे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे करके आप शिकायत बता करके अपना वो बता सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारा एक और सवाल आपसे है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल से व्यापार करना अब कितना आसान हुआ है?
0: ई वे बिल हर एक ट्रांसपोर्टेशन में, जब 50,000 से ऊपर का सामान एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में जाता है
1: जी,
0: सो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल में शिकायतें आती थी कि चेकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डिले होता है, हरासमेंट होता है। तो इस काउंसिल ने इस बार देखा इसको, इशू को। अब क्या काउंसिल ने किया है, ट्रांजिट स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली से सामान जा रहा है केरला
1: जी,
0: बीच में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
1: कई
0: स्टेट पड़े, तो कोई सिर्फ दिल्ली और केरल ही उसे चेक कर पाएंगे, बीच वाले
1: बीच कोई चेक नहीं,
0: कोई
1: कर
0: चेक नहीं कर।
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ थी ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेड छोटे व्यापारियों के लिए कि कोई भी चेक कर लेता था और फिर वो डिले होता था, समय लगता था चेकिंग में और सब में। तो वो चीज बंद कर दी इस बार काउंसिल ने। और सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सड़क पे खड़े होकर जो आ रहा है उसे चेक करेंगे, अब आपको बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए कि इस ट्रक में चोरी है, आपके पास पहले इंटेलिजेंस होनी चाहिए, संयुक्त आयुक्त रैंक के ऑफिसर के एक अप्रूवल चाहिए आपको कि वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा सकते हैं, आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस होनी चाहिए यही ट्रक में चोरी है
1: जी।
0: तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा ई वे बिल की उसमें।
1: गौरव जी एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जीएसटी ने भारत को विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया है?
0: जी, जीएसटी ने एक सर्टेनिटी दिलाई है विदेशी निवेशकों को कि जीएसटी है तो पूरे देश में एक ही टैक्स है
1: जी,
0: अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे। एक जीएसटी काउंसिल है जो कि जब भी उनकी समस्याएं आती हैं तो जीएसटी काउंसिल उनको सुनता है। जीएसटी काउंसिल ने 250 से अधिक सर्कुलर्स इशू किए हैं जहां भी ट्रेड को दिक्कत होती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जीएसटी एक सर्टेनिटी, जो टैक्स सर्टेनिटी चाहिए निवेशक को
1: जी,
0: वो जीएसटी ने दिलाई है।
1: और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि कई अर्थशास्त्री कहते थे कि जीएसटी ने छोटे कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया है
0: ऐसा। अब हमारे यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन हमारे 67 लाख से उठ बढ़ के 1.7 करोड़ हो गए हैं
1: जी।
0: तो छोटे आदमी बहुत सारे जीएसटी में आए, जीएसटी ने एक फॉर्मलाइज कर दिया इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी काफी कैश बेस्ड थी, काफी वो थी बिखरी हुई थी, उसको हमने फॉर्मलाइज करके जीएसटी ने एक फॉर्मल चैनल पे ले आया है जीएसटी।
1: तो श्रोताओं जीएसटी ने साबित कर दिया है कि जब एक देश एक सोच से चलता है तो परिवर्तन जरूर आता है, सुधार की ये यात्रा जारी है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों को इतने आसानी से दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: বিক্রয় বিনিয়োগ এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারের নীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন ঘোষণার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কী প্রভাব পড়ে তা বুঝতে এই দুই অর্থনীতিবিদদের গবেষণা নীতি নির্ধারকদের সাহায্য করেছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার এই মডেলগুলি সার্বিকভাবে গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, রবার্ট ই হল স্ট্যানফোর্ড এবং মাইকেল উডফোর্ড কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া 1,20,00,000 সুইডিশ ক্রোনা দুই অর্থনীতিবিদ সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে ISL ফুটবলে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড FC মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে 1-0 গোলে হারিয়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত সময়ে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড FC-র হয়ে গোলটি করেন জিথিন MS। শেষ করার আগে সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। ভারত ব্রিটেন অর্থনৈতিক সহযোগিতা দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মত ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ক্যান্সারের ওষুধের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মুনাফার হার সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা MRP 30% সীমাবদ্ধ রাখার কথা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর শুনবেন আগামীকাল সকাল 6:20 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: करने का आरोप लगाते हुए इसे उसकी विफल नीति बताया और अमरीकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इस वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। उन्होंने कहा कि व्यापक समझौते ने व्यापार विस्तार, नए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और नई उत्पाद श्रृंखलाओं को शुरू करने के कई अवसर प्रदान किए हैं। विश्व दर्पण के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुक उखना ने आज दोर्नू गोबी प्रांत के अल्तान शिरेसूम में तेल शोधन परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भारत के निरंतर सहयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
3: उलान बतार स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुक ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस रिफाइनरी के शुरू होने से मंगोलिया में ही परिष्कृत ईंधन का उत्पादन संभव हो सकेगा। उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने में मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गुदसुरवे की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 में मंगोलिया यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा मंजूर की गई थी। मंगोलिया सरकार ने इस राशि का उपयोग दोर्नू गोबी प्रांत में अपनी पहली तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए करने का फैसला किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों पर समाधान वार्ता

0: व्यवस्था को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी समाधान खोजने के बजाय दुष्प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान का अपनी विफलताओं के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच आपातकाल लागू किए जाने के बाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पीटीआई के साथ अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाति और पीटीआई के प्रांतीय अध्यक्ष जुनेद अकबर भी शामिल हैं। पुलिस ने स्वाबी में पीटीआई के 56 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को बढ़ते आतंकी हमलों और संवैधानिक व्यवस्था के ठप होने का हवाला देते हुए प्रांत में आपातकाल लागू किया था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारियों में फेरबदल किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले सप्ताहांत हुए घातक हमले के बाद उड़ानों के परिचालन पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकारी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच कर रहे हैं।
1: सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों के साथ हवाई अड्डे की सुरक्षा और परिचालन क्षमता की जांच पूरी होने तक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। 10 और 11 अक्टूबर को हुए हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हमलों के बाद कई विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ान रद्द या निलंबित कर दी है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खतरे का पता लगाया गया है और उसे निपटने की कार्रवाई की जा रही है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि हमले में मारे गए भारतीय नागरिक मोहम्मद यूसुफ अली के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार रियाद में ही करने का फैसला किया है। दूतावास इसमें परिवार की मदद कर रहा है। दूतावास के अनुसार घायल भारतीयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूतावास ने कहा है कि वह घायलों के परिजनों के संपर्क में है और उन्हें आवश्यक सहायता दे रहा है। इस बीच हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विश्व दर्पण के लिए दुबई से मनीष सेवा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजीत वर्मा।
0: रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि यूक्रेन के साथ ऊर्जा युद्ध विराम के मुद्दे पर उनके पास अभी कुछ भी कहने को नहीं है। संभावित ऊर्जा युद्ध विराम केवल तेल शोधन संयंत्रों या अन्य सुविधाओं पर लागू होगा या किनके साथ विशेष रूप से संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं, इसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि 3 दिन के इस महोत्सव में 10 नाट्य दल 11 नाटकों का मंचन करेंगे।
2: आज से शुरू हुआ है, 12-13-14 तक के 3 दिन चलेगा दिल्ली में। एनएसटी का अपना सभागार अभिमंच तथा एलटीजी कमानी श्रीराम सेंटर, वहाँ पर प्लेस चलेंगे। लगभग हर रोज 2-3 नाटक का मंचन होगा और भारत में 9 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो टैगलाइन है ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल का, शेयर्ड स्टोरीज। सो शेयर्ड स्टोरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे अपनी अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी को, अपने अपने कंटेम्प्रेरी स्टोरी को, रियलाइजेशन को, तो हम वसुधैव कुटुंबकम बनने में असफल रहेंगे।
0: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। IBCA एक संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना विश्व की 7

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पहला पहला ओ जाने माने सुन ले, ये दीपिका कुमारी है, ये दीपिका कुमारी हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी।

পরের গানটি শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে, ছায়াছবির নাম সনম রে।